ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम हरा, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। ऐसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटका है। बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे, नंदी पे बैठ गए। और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू है, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा। भोलेनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बारात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है, कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के चार चार हाथ हैं, किसी के दस दस पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके। बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता। लगा अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा। तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आगे दामे। बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख ले कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें, नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है, बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कहिए उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए, और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई, और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या, अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है। अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है। ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता, आपको इन्हीं से लेना देना, आगे यही अपनी छोरी देंगे, अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से, तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी, चलने ही वाले थे कि तभी
अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता, बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूं अगर आपकी आज्ञा हो तो। बाबा जी बोले, हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने, तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तो महाराज उससे तो कोई लाभ नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले, वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के, और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर, और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा, दासी को कहा, अरे जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा, बोला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखे होगो मैया तेने ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई, बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो। बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए हैं। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे। बोले अरे मैया, तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया, हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए। ले मैया, मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे, हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही, कहा बाबा आपके कहियो, कहा मांगने आयो तू। बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आई। मैया बोली, बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगा, तू कहेगो मोकु मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी। मैया बोली, बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है, डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी। इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूर उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गए तो। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊं मैया, आगे भविष्य में चल के तो वो 100 पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो, सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली, बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचेगो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहाँ तू आयो है, जहाँ लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप मापन ते नहीं खेले, वो तो 4 दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले, नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली, या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले, ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली, देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटेली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले, तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे, तो भी हटेंगे नहीं।
मैया यशोदा बोली, बाबा तू दूनी रमा च दूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले, कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे, ते तब देख लूंगो। मैया बोली, मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी, पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी? बोले, नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी, छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो, तब तो बाहर निकालेगी घर से, तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली, छोरा कुआरो रख लूंगी, पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले, बड़ी हटीली अम्मा आई, हम तो सोचे हम ही है जो कछे, पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें, हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली, बैठो रे, मैं अपनों काम धंधो संभाल। मैया भीतर चले। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मन ही मन ठाकुर जी को कहते, अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा, अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले, हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले, क्या? बोले, रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई, आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है, तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे, देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। मैया बोली, गोपी कहा करूं? बोले, रो रहे हो है तो याकु कछु दूध पिला, कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो, अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई, तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए, तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है, अब कहा करे। गोपी बोली, मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई गोपी ने नजर लगा दी, क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो, मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो, पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली, अब कहा करे? बोले, कहा करे का नजर उतारो या की। बोले, कैसे नजर उतारे? बोले, जा रसोई थे वो लेके आ, राई नोन लेके आ भीतर। मैया गई, नमक लाई, राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की, सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी, अब नजर उतारने के बाद तो कान्हा कम रोने चाहिए, पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे, ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली, मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो,
या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो, नजर उतारी तो भी चुप नहीं। भाई अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। भैया बोली कहा बीमारी है? बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का? बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया अब वह भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी? बोले मैं थोड़ी उतारूंगी, वाकई यहाँ तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगो वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए, मैं तो काय को जानू नहीं हूँ, भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना, अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई, बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है, तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े हैं, उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है, चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो, हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारे हुए वालों कोई बाबा चाहिए, तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना, तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ, मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू, हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते? अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है, मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर, इतनो कोई बड़ी बात है? अभी लेके आ एक चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो, भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ेगो और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी? बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, यही तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब, मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, और तू वाकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है, कैसो रूप है वाको? गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो, तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो, नजदीक मत जाइयो, और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाए। अब तो कू बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। भैया बोली मोकू तो लाला प्यारो, तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर, डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई, ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया, कहीं छोरा को बड़ी भोली है मैया बड़ी भोली है, ढक करके चल पड़ी। आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है बढ़ती जा रही है, गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। क्या बोली लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे कि
किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र पंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा हंसन लगे। अब मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे भविष्य बतानो आवे? मैया ना ऐसी होती है एक काम में 10 काम करना चाहती है, कोई एक आयोजन हो एक कार्यक्रम हो उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाह के ताई तो लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा। मैया बोली ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले तो ठीक है मत दो हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा रुक जा तेरी गोद में दे दूंगी पर देख बाबा जरा संभाल के अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले मैया अरे यशोदा मैया तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने मैया, तो कु पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो मैया, तो कु पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो मैया, बड़ो है के या के सोने के महल होंगे और तोर मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली बाबा मैंने तो कु काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो, अरे राजा बनेगो नाम रोशन करेगो बड़ो होगो महल बनाएगो तो वो तो या के नहीं होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले मैया तू बता तो कु तेरे निया कहा चाहिए? बोले मो को तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगा। बाबा बोले 4 दिन को तेरा छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता अब छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी वो को रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है? अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब? बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। जैसे मैया ने सुनी तो बस वही खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यो सोच रही हूँ अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी बाबा, वही बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलू, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान कर लिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा, क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को।
तब मैया कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यहीं रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं, जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आपके लिए इजी कर देती हूँ कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ, तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज़ वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीज़ें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें? और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदलते हैं।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीज़ों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीज़ें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: और सोशल मीडिया से देख के फॉलो तो करते हैं एंड लैंडेड अप इनटू बिग प्रॉब्लम्स. तो एक बेसिक सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज पेरेंट्स आर मच अवेयर, एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे ज़रूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था। तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: कुछ कुछ कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद, और कैसा रहा आपका वीकेंड पहले तो ये बताइए। और आई नो जब वीकेंड खत्म होता है ना तो मन बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि फिर से वही ऑफिस वाला लूप स्टार्ट हो जाता है, और मंडे वाले दिन ना स्पेशली मंडे ब्लूज फील होते हैं। तो भाई डोंट वरी, अंजलि है ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ अंजलि ऑन एयर सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। तो देखिए भाई, मंडे वाला दिन है, और अगर आज के दिन को ना ऐसे मूड चढ़ाकर काम करेंगे ना तो वैसे ही मजा नहीं आने वाला, बिकॉज वीक की स्टार्टिंग आज के दिन से होती है। तो बेटर है कि आज के दिन को आज एक प्यारे से स्माइल के साथ शुरू करते हैं, और देखिए चुटकी बजाते ही ना फिर से वीकेंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मंडे आ गया है, वीक स्टार्ट हुआ है, तो इस वीक को ना नई एनर्जी, नई वाइब, नई मस्ती, नए एंटरटेनमेंट के साथ शुरू करेंगे। आज बहुत सारी अपडेट्स लेकर आ गई हूं मैं, बहुत कुछ है आज मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको इंतजार। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। एंटरटेनमेंट के साथ शुरू करेंगे।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हेलो हेलो फरीदा बाहर, क्या हाल चाल है आप सभी के? और अगर बेहतर हाल चाल है ना, तो बेहतर हाल चाल को बेहतरीन बनाने आ गई हूँ। वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज एजेंसी। और अगर मैं बात करूँ ना कि आज का वेदर क्या कहता है, आज फरीदाबाद का मौसम क्या कहता है, तो देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाले 34 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर रहने वाले 25 डिग्री। इसी के साथ अगर विंड स्पीड की बात करूँ 8 है और ह्यूमिडिटी मिलने वाली है आज आपको 59%। और देखिए दिन रहने वाला है सनी सनी, यानी कि अच्छी खासी गर्मी आज आपको मिलने वाली है। तो इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

फरीदाबाद तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरज कुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन। दौड़ेगा फरीदाबाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. इसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करना है.

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? फोन हाथ में होता है फिर भी हाथ में फोन ढूंढ रहे होते हैं, चश्मा सर पे होता है फिर भी चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, या फिर कभी किसी अपने को बार बार किसी एक चीज को पूछते हुए देखा हो, अपना नाम भूल जाते हुए देखा हो, घर के डेली रूटीन भूल जाते हुए देखा हो। अगर ऐसी चीजें हो रही है ना यार, तो इन चीजों पर ना थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं इस दिन की बात करूँ, 21 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, एक ऐसा दिन है जो हमें डायमेंशिया और अल्जाइमर डिसीज के बारे में अवेयर करता है, अफेक्टेड पीपल और उनके फैमिलीज को समझने का मौका देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर भूलने वाली चीज अल्जाइमर नहीं होती, ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए। कई बार हमारी मेमोरीज में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें इफेक्ट होती है, और कई बार आपकी उम्र का सो ये सारी चीजें हैं जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अवेयरनेस का मतलब सिर्फ डिसीज को जानना नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ पेशेंस, डिग्निटी एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रहना है जो इस चीज से डील कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगी, आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, तो उन पर इरिटेट होने के बजाय उन्हें समझाइए, उनको प्यार दीजिए, उन्हें केयर दीजिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलते हैं थोड़ी देर में।

तेरे नालो चली हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदो तेरे मोडे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया भी लगन गियां फे बालियां गल्ला नाल जदो

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं।

है वो जिसने मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाई अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड की पू बेबो का एटीट्यूड और करीना कपूर का स्वैग, ये कॉम्बिनेशन एवरग्रीन है। और आज हम बेबो की बात कर रहे हैं, आज हम करीना की बात कर रहे हैं, बिकॉज रेडियो महारानी पर आज बर्थडे बस सेलिब्रेट किया जा रहा है करीना कपूर का। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ईयर 2000 में रिफ्यूजी से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली करीना ने कभी खुशी कभी गम, चमेली, जब वी मेट और थ्री इडियट जैसी मूवीज में ना हमें क्या दमदार किरदार दिखाया है। और साथ ही फिर बात करूँ मैं बजरंगी भाईजान की क्रू और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर करीना ने ना अलग अलग आइडेंटिटी हमें दिखाई है। और इतना ही नहीं, वो हो या फिर हो गीत, उनका कैरेक्टर ना, उनके डायलॉग, एटीट्यूड, सब कुछ ऑन पॉइंट होता है। तो चलिए विश करते रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेबो, आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। डायलॉग एटीट्यूड।

0: देखे मैडम, अरे खाएगी क्या?
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हीरो की एंट्री पर तालियां तो बहुत बजती हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक विलेन की एंट्री भी अगर स्क्रीन पर टेंशन क्रिएट कर दे तो समझ जाइएगा भाई, पर्दे पर आ गए हैं गुलशन ग्रोवर। और 21 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है बॉलीवुड के आइकॉनिक बैटमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर का। अगर मैं इनकी बात करूँ तो राम लखन, सड़क, मोहरा और बादशाह जैसी फिल्मों में इन्होंने अपने जो विलन वाले किरदार निभाए ना, ऑडियंस के दिलों में छाप छोड़ कर बैठे हैं। कभी एंटरटेन किया है, कभी सिग्नेचर स्टाइल से बैटमैन बोला है, कभी पॉप कल्चर आइडेंटिटी बनाई है। इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग बात यह है इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड तक अपनी जर्नी नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा और ओटीटी में भी काम किया है और अपने फैंस का दिल वहाँ भी जीता है। क्योंकि बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए लेकिन कुछ विलन ऐसे होते हैं जिनकी एंट्री ना हमेशा याद रह जाती है, वही है गुलशन ग्रोवर। सो रेडियो मारन विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे बैटमैन, आप ऐसे ही हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और बने रहे रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ हमेशा।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

0: Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है, तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी तो हो जाए। हाँ जी फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट, और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को। और आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ अपना टाइम पास करती है? यही गलत फहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस, जिन आंटियों को ना हम इतना कोसा करते थे कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है, देखिए भाई उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम के इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताती है कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूं, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूं और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब भाई आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झांक कर रहे हो। अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपकी इस टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यार अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आपको, इतनी जद्दोजहद करनी है लाइफ में? इस तरह की चुगली कीजिए, गॉसिप कीजिए, पैसा कमाइए और हाँ अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ में मजे कीजिए। लेकिन ये तो था देखिए भाई मजाक के लिए, लेकिन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी हमें क्या लेसन देती है। तो भाई देखिए, आज की स्टोरी हमें ये लेसन देती है, गॉसिप से पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है ना किसी के साथ शेयर मत कीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ये जो कहानी है ना वो कब जाकर कहां पर ब्रॉडकास्ट हो रही हो। और इसी के साथ ही आज का सोशल स्यापा, और ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है। लाने की अपील की है ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी

मेरी सहेलियां जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन पता है ब्रेकअप के बाद जो दुख होता है ना, जो दर्द होता है, वो दर्द जो दिल टूटने का होता है, क्या आपको पता था कि इमोशन का असर हमारे हार्ट पर भी बहुत गहरा पड़ता है। किसी ने कभी ना दिल टूटने को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा। लोगों को लगता है क्या है, हील हो जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं जिंदगी में। ना, मूव ऑन नहीं हो पाता। हम अक्सर कहते हैं ना कि दिल टूट गया, लेकिन कभी कभी इंटेंस इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस का इम्पैक्ट सच में हमारे हार्ट पर पड़ सकता है। और ये जो कंडीशन में जिसकी बात कर रही हूँ ना, डॉक्टर ने इस कंडीशन का पूरा नाम बताया। दिल टूटने वाले इस कंडीशन को कहते हैं ताकत सुबो कार्डियोमायोपैथी, डॉक्टर जिसे आम भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेस फील होता है, जैसे किसी अपने को खोने का दुख, सडन शॉक या इंटेंस फिजिकल स्ट्रेस, और जिसके बाद ना हार्ट की मसल टेम्परेरली वीक हो सकती है और सिंड्रोम हार्ट अटैक जैसे फील होने लगता है। लेकिन बताए हमें गुड न्यूज क्या है, दिल टूटने के बाद भी ना प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद आप रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है किसी के इंसान का हमारी जिंदगी से जाना हमारी खुद की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालता है। इसलिए भाई आज का मैं टेक अवे लेकर आई हूँ और आज ना आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप ये चीज आज यहाँ से लेकर जाएं। स्ट्रेस को सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ भी होता है ना दिल टूटने के बाद, जैसे कि आपके दिल में दर्द, ब्रेथलेसनेस या फिर जितना भी अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट है ना, तो मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए। और हाँ यार, दिल को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए उन्हें खुशी खुशी विदा कर दीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। अब वक्त है खुद से प्यार करने का, तो खुद से प्यार कीजिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना, आज मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजा नार सिंह मल्लवगढ़।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बताते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हो। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी ये पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है, खास आपके लिए मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो डस्टबिन में आप कूड़ा डाल रहे हैं ना, ये जो डस्टबिन में आप चीजें डाल रहे हैं, आपको पता है इन चीजों से ना कल जाकर बिल्डिंग मटेरियल भी बन सकता है। यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर, इसीलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आती हूँ। तो भाई देखिए, जापान से टेक्नोलॉजी की एक ऐसी न्यूज सामने आई है ना, जिसे सुनने के बाद ना आप कहेंगे कचरे का भी इतना बड़ा काम हो सकता है, ये तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर्स ने ये बताया है कि डिस्कार्डेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज करके एक प्लांट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप किया गया है और प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले जितना भी फूड वेस्ट है कलेक्ट किया जाएगा, फूड वेस्ट को ड्राई करके पाउडर बनाया जाएगा, फिर पानी ऐड करके और उसमें थोड़ी हीट प्रेशर के साथ मोल्ड किया जाएगा, जैसे कि कुछ देर में आपको ईंटें मिल जाएंगी। और ये ईंटें बनी होंगी किससे भाई, आपके फूड वेस्ट से। यानी कभी आपने सोचा है जिस खाने को हम वेस्ट समझ रहे थे, कितने काम की चीज है यार। और अगर ऐसी ही चीजें रिसाइकल होती रही ना, तो एक दिन कुछ वेस्ट ही नहीं बचेगा, सब कुछ यूज्ड में आ जाएगा। इसी को फिर रीयूज रिसाइकल हम लोग कहेंगे। और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही सस्टेनेबल है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट को उसकी चीजें भी मिलेंगी और फ्यूचर ना यार, फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। देखिए जापान बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक दिन हम लोग भी कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जरूर। और हम लोग भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, लेकिन ये इनोवेशन ना कुछ हटके है। तो ऐसे इनोवेशन सुनने के लिए ना बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

आज मैं एक चीज सोच कर देखेगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रील से ब्रेक लिया जाए तो क्या होगा। मैं बताती हूँ ना क्या होगा। ना तो सुबह उठते ही स्क्रोलिंग होगी, ना एक आखिरी रील वाला झूठ होगा। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना एक मैं स्टडी लेकर आई हूँ। तो स्टडी में ना एक्सपर्ट्स ने बताया कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों का ब्रेक लेने पर ना आपको मिल सकता है ज्यादा टाइम, बेहतर मेंटल क्लैरिटी, मूड में सुधार और सेल्फ स्टीम में बूस्ट। तो देखिए भाई, बात तो फायदे की है यार, क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं ना, एक तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, डेटा तो छोड़ दो यार, डेटा तो अनलिमिटेड है, लेकिन आपको पता है हमारा फोन भी इफेक्ट होता है, हमारी फोन की बैटरी भी खराब होती है। ये तो चलो दो ऐसी ऐसी बातें थी कि ठीक है, जिनका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया। हम अपनी स्क्रीन को सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हम किसी रील को पूरा खत्म होने तक कभी इंतजार नहीं करते। अब आप सोचिए कि हमारा फोकस्ड करने का जो तरीका है वो कितना खराब हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग कितना खराब हो गया, और हमने अपने माइंड पर कंट्रोल भी खो दिया। हम जो वर्चुअल वर्ल्ड में देखते हैं हमें लगता है वही सच्चाई, जिसकी वजह से हमें इतना स्ट्रेस भी ले लेता है कि यार सब घूम रहे हैं, सबकी अच्छी जॉब हो रही है, सब अच्छा पैकेज ले रहा है, और हम क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें ना कंपैरिजन को भी लेकर आती है। तो यहाँ पर अब टाइम हो गया डिजिटल डिटॉक्स करने का खुद को। और स्टडी में ना ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने वालों ने ना स्ट्रेस घटने, ओवरऑल वेलबींग बेहतर होने जैसे फायदे भी देखे हैं। तो शायद 7 दिन रील से दूरी, बोरियत नहीं ब्रेन की छुट्टी हो सकती है, और साथ ही आपको मिल सकता है एक बढ़िया रीस्टार्ट, एक स्टार्ट जिससे ना आप नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आ सको। इस बार आपने करना क्या है, इस बार ना आपने एक हफ्ते का चैलेंज लेना है खुद से, कोई रील नहीं देखनी है, कोई रील बनानी भी नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स करना है खुद को, और फिर देखिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और फटाफट से यार मैं तो चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा काम भी है मेरे पास। आपका यह अभी भी बैठकर रील देख रहे हो ना, देखते रहो, और इसी के साथ मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी वक्त हो गया है इस म्यूजिक ब्रेक का।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

हेलो हेलो जी, हाँ जी, फरीदाबाद। अब टाइम हो गया है फिट फरीदाबाद बनाने का खुद को, और ये संकल्प मैंने ले लिया है। इसीलिए मैं हर दिन आ रही हूँ आपको ये बताने के लिए आपने करना क्या है 27 सितंबर को। इस बार अगर मैं बात वीकेंड की करूँ ना यार, हर वीकेंड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रिप पर जाना है। ये जो 27 सितंबर वाला वीकेंड आने वाला है ना, ये वीकेंड आपको बहुत जोर से भागना है। और कहाँ भागना है, फरीदाबाद हाफ मैराथन लेकर आ गया है। 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड पर होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहाँ पर अगर मैं रनर्स की बात करूँ ना, तो आपको मिलने वाली है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन के ऑप्शंस। तो चाहे आप एक प्रोफेशनल रनर हो, फिटनेस फ्रीक हो, या वो इंसान जो रोज बोलता है मंडे से वर्कआउट पक्का है भाई, तो आप सभी के लिए आ गया है फरीदाबाद हाफ मैराथन। शूज निकालो, ट्रेनिंग शुरू करो और फरीदाबाद को दिखा दो। फिटनेस का क्रेज सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज तक नहीं, रोड तक भी नजर आने वाला है 27 सितंबर को। सो फरीदाबाद, आर यू रेडी टू रन? अगर देखिए रेडी हो चुके हैं ना रन करने के लिए, तो सीधा मिलेंगे 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड्स पर, और वहां पर ना जमकर भागने वाले। तब तक के लिए ना, स्टे फिट, स्टे हेल्दी और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

चलिए भाई, फरीदाबाद को मिलकर बनाते हैं फिट फरीदाबाद। अंजलि बहुत ज्यादा परेशान है ना आजकल, और शायद डिप्रेशन में भी है। लेकिन आपको पता है, टाइम ना सब कुछ हील कर देता है ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक टाइम कुछ हील नहीं करता तब तक आप अपने आप से कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं, और कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में 100% फ्रूट जूस और स्मूदीज इंक्लूड करनी है। फिर देखिएगा 4 हफ्तों के बाद आपकी डिप्रेशन के सिम्टम में ना थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहती है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक स्टडी में जूस या स्मूदीज लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिप्रेशन वाला जोन है ना वो हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जूसेस से फ्रेश लेने हैं, वो पैक्ड जूस नहीं लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% आपको शुगर मिलती है। इस तरह के जूसेस से जो है आपको दूर रहना है, आपको फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स लेना है। साथ ही आप इनके साथ इसका फाइबर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो अगली बार जब भी आपका मूड लो होना तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास जूस पी लीजिएगा, क्या पता है ये मैजिकल ड्रिंक आप पर इंस्टेंट काम कर जाए। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, और हाँ अपने आप को ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना आज, मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजा नार सिंह मल्लवकर।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हो। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है, खास आपके लिए मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

हेलो हेलो जी, हाँ जी, फरीदाबाद। अब टाइम हो गया है फिट फरीदाबाद बनाने का खुद को, और ये संकल्प मैंने ले लिया है। इसीलिए मैं हर दिन आ रही हूँ आपको ये बताने के लिए आपने करना क्या है 27 सितंबर को। इस बार अगर मैं बात वीकेंड की करूँ ना यार, हर वीकेंड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रिप पर जाना है। ये जो 27 सितंबर वाला वीकेंड आने वाला है ना, ये वीकेंड आपको बहुत जोर से भागना है। और कहाँ भागना है, फरीदाबाद हाफ मैराथन लेकर आ गया है। 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स पर होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहाँ पर अगर मैं रनर्स की बात करूँ ना, तो आपको मिलने वाली है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन के ऑप्शंस। तो चाहे आप एक प्रोफेशनल रनर हो, फिटनेस फ्रीक हो, या वो इंसान जो रोज बोलता है मंडे से वर्कआउट पक्का है भाई, तो आप सभी के लिए आ गया है फरीदाबाद हाफ मैराथन। शूज निकालो, ट्रेनिंग शुरू करो और फरीदाबाद को दिखा दो। फिटनेस का क्रेज सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज तक नहीं, रोड तक भी नजर आने वाला है 27 सितंबर को। सो फरीदाबाद, आर यू रेडी टू रन? अगर देखिए रेडी हो चुके हैं ना रन करने के लिए, तो सीधा मिलेंगे 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स पर, और वहां पर ना जमकर भागने वाले। तब तक के लिए ना स्टे फिट, स्टे हेल्दी और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ। तो सीधा मिलेंगे 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड्स पर।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपकी मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू। डॉक्टर कॉलिंग।

हाँ जी देखिए भाई, बातें बहुत सारी हो गई हैं और बातें करते करते ना अभी मेरी नजर इस घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि 11 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे आई थी और 11 बजने वाले हैं, यानी कि आज मैंने बहुत सारे गप्पे शप्पे आपके साथ लड़ाए हैं, बहुत सारी अपडेट्स आपको दी हैं, इंफोटेनमेंट का डबल डोज मैं लेकर आई थी। तो भाई अभी ये घड़ी इशारा कर रही है कि अंजलि बस बहुत हुआ बेटा, अब चलिए यहाँ से, बिकॉज आज जाएंगे तभी तो कल आऊंगी ना। सो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। और जाते जाते ना एक बार ये जरूर बता देती हूँ कि आज आखिर मेरे टिफिन में क्या है। सो भाई आज भी मैं बिना टिफिन के आई हूँ और आज मैं करने वाली हूँ चीट मील। सो कभी कभी ना खुद को एक रिवॉर्ड दे देना चाहिए। इस पूरा वीक ना मैंने ट्राई किया था कि कोई जंक नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस कहाँ रख पाती हूँ ना, तो इस बार भी नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सो यही होगा मेरे साथ। तो अभी फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना टिफिन एंजॉय करूंगी यहाँ से जाने के बाद, एक गर्मा गर्म कॉफी पीने वाली हूँ और फिर कल आऊंगी एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वाइब के साथ। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखेगा, अपनों का ख्याल रखेगा और सुनते रहिए रेडियो महारानी पर। शानदार सा ट्रैक जो है खास आपके लिए, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आज का जो कोट है ना, जिससे हम शुरुआत करने वाले, वो हमारे आज गेस्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और कोट सुनिए। एक नारी जब खुद के लिए खड़ी होती है तो अनजाने में हजारों महिलाओं के लिए रास्ता बना देती है। तो ये जो लाइन है ना कि एक नारी जब खुद के लिए तैयार हो जाती है, वो सोचती है नहीं मुझे ये करना है, तो उसे देख के पीछे 10 और महिलाएं मोटिवेट होके आती हैं उस पाथ में, उनको देख के 10 और, ऐसे एक जो ह्यूमन चेन बेसिकली वुमेन्स की बन जाती है, जो मोटिवेशनल बेस पे बस चल रही होती है और लोगों को इंस्पायर करती जाती है कि वो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ, हमें भी करना चाहिए लाइफ में कुछ ऐसा। तो वो सिर्फ एक नारी शक्ति के साथ होता है, क्योंकि जब मेंस की हम बात करते हैं तो मेंस सामने वाले को देखता है तो कहता है नहीं, इससे तो या तो मैं अच्छा करूंगा या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो वो जेलसी आ जाती है। बट वुमेन नहीं, वुमेन हर बार वो कॉम्पिटिट लेवल पे आती है कि नहीं इसने ये किया है तो मैं इससे एक स्टेप ऊपर ही दिखाऊंगी, फिर दूसरी वाली कहती मैं इससे ऊपर। तो ये कंपैरिजन में जो ऊपर जाने की चेन है ना, ये वुमेन्स में ज्यादा स्ट्रांग होती है ये मेन के कंपैरिजन। ये एक साइंटिफिक पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी कोट लिखा गया है। बट हमारी आज की गेस्ट ने भी ऐसा ही कुछ करा था, वो अकेले चलना शुरू करी थी बट उनके साथ लाखों महिलाएं जुड़ चुकी हैं, क्योंकि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो गेस्ट आज हमारे साथ होंगी महारानी स्टूडियोज में, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: ला ला ला ला ला ला ला हो गए।

वो सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

0: बहुत कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।
1: रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
4: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरज कुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

वुमेन्स इन स्पॉटलाइट में इनके अलावा आज कोई जगह ले ही नहीं सकता। इन्होंने जो करके दिखाया है शायद इसका इंतजार पूरी इंडिया कर रही थी एक तरफ से। रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन्स एशिया कप का ये मैच, और क्या करा है पाकिस्तान, मतलब आप हारते ये कोई बात नहीं बट ऐसे हारोगे। इंडियन वुमेन्स टीम ने जो कमाल करके दिखा दिया है कि भाई इन्होंने पूरे पूरे 10 विकेट उनके उड़ा दिए, और वो भी बहुत कम रन दिए उनको, बहुत कम। क्या ये अभी तक का, मेरे को लग रहा है एशिया कप का ये वुमेन्स का किसी भी मैच का सबसे लोवेस्ट होगा। 55 रन पे पूरी टीम को आपने आउट कर दिया, क्या था ये फीमेल्स इन ब्लू? मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये किस तरह का मैजिक आप आज पिच में लेके आए थे, या किस तरह से आपने वहां पर जलवा जो है वो बिखेरा था। मैं बॉलिंग की बात करूंगा तो हर एक बॉलर अप लेवल पे जाके खेल रहा था। अब बैटिंग के लिए तो आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड हो चुका था कि आप क्या ही बोलोगे जब आपने सामने वाले को 55 पे ही आउट करके रख दिया है। तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर वो निकल के आया था, और जहां पर 27 रन तक तो इनकी पारी बहुत बढ़िया चल रही थी, आउट आउट नहीं हो रहे थे, बट 27 रन से लेके वो 55 रन के बीच में ऐसा क्या हुआ? वो बीच के 28 रन में आपने ऐसा क्या उलटफेर कर दिया कि पूरी टीम ही ढेर पेड़ आउट कर दिया आपने? तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है जितनी भी बाकी टीमें हैं उन्हें फीमेल्स इन ब्लू से थोड़ा सा सतर्क होकर खेलने की भाई तैयारी कर लेनी चाहिए। ये पूरी फॉर्म के साथ आई, और कब चुटकियों में आपका खेल खत्म कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है यार, ये होता है एक प्राउड इंडियन वाली फीलिंग जो इस टाइम हम सबको हो रही है। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस

ये लाइन तो हम अक्सर कहते हैं ना, शी हैव चेंज द वर्ल्ड, बट आज मैं जिसकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, शी हैव मेक द वर्ल्ड। उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया, वरना शायद एडुकेशन को इतना बड़ा एक, जो मैं कहता हूँ ना, गैप या लैप जो था इतने टाइम तक, वो हमेशा रहता, वो कभी हम कवर कर ही नहीं पाते अगर सावित्री बाई फूले ना होती। हाँ जी, मैं आज उन्हीं की कहानी के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और सावित्री बाई फूले, ये नाम हम लोग ने अक्सर सुना होगा, बट उनकी कहानी के पीछे का जो संघर्ष है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। एक टाइम था जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, और उस टाइम पे सावित्री बाई

स्कूले ने डिसाइड किया था कि भारत में पहला गर्ल्स स्कूल वो शुरू करेंगी 1848 में, जहां पर लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए बिल्कुल इंस्पायर नहीं करते थे, मोटिवेट नहीं करते थे। इन्होंने कहा नहीं, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी भी और उन्हें उनके वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना भी सिखाऊंगी। जब वो स्कूल जाती थी तो उनपे पत्थर फेंके जाते थे, उनपे कीचड़ फेंका जाता था, उनको तमाम बातें बोली जाती थी और सावित्री बाई शांति से एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने बैग में रख के लेके जाती थी और वहां जाके चेंज करती थी और उसके बाद हिम्मत से लोगों को मोटिवेशन देती थी, शिक्षा देती थी कि नहीं, हमें ये समाज को बदलना है, समाज की सोच को बदलना है। और आज जब लाखों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में सक्सीड कर रही हैं, तो हमें सावित्री बाई फूले के उस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जहां से उन्होंने वो पहला कदम उठाया था, जिस वजह से आज इतनी लड़कियां पढ़ पा रही हैं, अपने लिए कुछ करियर में कर पा रही हैं। तो उन सबके लिए सावित्री बाई फूले जो हैं वो एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए, वहां से उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमेशा उनके बारे में लोगों को और ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्ट्रेस स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

इस घर में जाते ही लोगों के अंदर ऐसे चेंज आ जाते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करो कि ये भी ऐसा कर सकता है क्या। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और कल से शुरुआत हुई है बिग बॉस की। और बिग बॉस की शुरुआत होते ही घर के अंदर एंटर हुए हैं बहुत सारे गेस्ट, और आते ही कलेश शुरू। सोने के लिए कलेश हो रहा है भाई कि ये बेड मेरा है, ये बेड मेरा है, मुझे ये बेड चाहिए, वो बेड चाहिए। और भाई तुम मेरी कौन से लड़ रहे हो भाई, वो कह रही है मैं लेजेंड हूँ मुझे ये बेड चाहिए। अरे वहां आप क्या, वहां आप कॉमन कंटेस्टेंट बन के गई, वो भी वही लेवल पे आया, वहां वो लेजेंड ही क्यों देखेगा कि आप लेजेंड है तो आपको बेड दे दे, आपको वो दे दे, सीनियर आप सीनियर सिटीजन अलग कार्ड खेल रहे, तो आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको ये सब लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, वो कॉम्पिटिटर है, वो भी अपने लिए लड़ेगा कि मुझे ये बेड चाहिए, मेरे ये 10 रीजन है, आपके ये 10 रीजन है। तो वो कह रहा है मैं अगर किसी के साथ सोया तो वो नहीं सो पाएगा, उसके अपने अलग रीजन चल रहे हैं। बट मैरी कॉम ने जाते ही नहीं ये सिंगल वाला बेड ही लूंगी मैं, बिल्कुल भौकाल के साथ वहां पर बोलना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं समझा रहे हैं उनको, कह रही नहीं मैं लेजेंड हूं। अरे आप लेजेंड हैं, हम सब मान रहे हैं, पूरा इंडिया मान रहे, बट उस घर के अंदर नहीं। उस घर के अंदर आपको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग वहां पर चीजें जीतनी है। आप बाहर जो करके आए उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर नहीं जीतना है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आप सब एक लेवल पे, आप सबको कॉम्पिटिट करना है। अब वहां पर भी अगर कोई ये देखने लगे नहीं ये लेजेंड है और हम इनको ये नहीं करेंगे, इनको हम खाना बना के देंगे, तो वहां आपका जाने का फायदा क्या। वहां आपको सर्वाइवल ही तो करना है ऐसे लोगों के बीच में जो आपके इक्वल हो चुके हैं। तो एक ये थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है घर के अंदर अब हमको। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज के बीच में जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत मजा आने वाला है, तो उनके लिए सीजन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वुमेन्स राइट की जो बात है ना, वो आज आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा आर्टिकल क्या वुमेन राइट्स पे वर्क कर रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से, इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब भी आप किसी भी लॉफुल चीज के सामने जाएंगे तो मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे सुना जाएगा, समझा जाएगा, तब कोई डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक मेल है उसे ज्यादा समझा जाएगा या सुना जाएगा, इक्वल वहां पर दोनों जन होने चाहिए लॉ के सामने, कोई भी लॉ वाली चीज के सामने आप जा रहे हैं। आर्टिकल 15 बताता है नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की चीजों को लेके, कि ये सिर्फ फीमेल्स को मिलेगा, ये सिर्फ मेल को मिलेगा, हर अधिकार दोनों को मिलना चाहिए, जेंडर वाइज डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आज के टाइम में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मेल के लिए है उतनी ही फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए, पर हो सकता है फीमेल्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो वुमेन एम्पावरमेंट वाले ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, बट इक्वल राइट्स दोनों के लिए होने चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 16। और इसी आर्टिकल को अगर आप अंदर से देखेंगे तो इक्वल पे, इक्वल वर्क स्पेस, वहां पर इक्वल तरह से आपको ट्रीटमेंट मिले, ये भी उस आर्टिकल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर डॉटर को अपने जो घर, जो इनलॉस का घर है वहां भी, और जो उसका रियल घर है मम्मी पापा वाला, वहां भी इक्वल राइट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके। तो ये जो पूरी तरह से एक महिला को सशक्त बना दें कि नहीं, अगर वो सोचे कि मैंने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं करा है, एडुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है मुझे, तो ये उसका राइट है कि वो घर पे बोले कि अगर बेटा पढ़ने जा रहा है तो मुझे भी जाना है, उसे ये मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब आप इसमें फ़ायदा उठाने लगे कि आपको एक मिला है तो आप कह दो नहीं मुझे दो चाहिए, मुझे तीन चाहिए, मुझे चार चाहिए। इक्वल मींस इक्वल, फिर वो इक्वल बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी एक को अबव या किसी भी एक को नीचे हमें नहीं रखना है। ये आर्टिकल्स हमको समझाते हैं, और वुमेन्स को भी अपनी राइट समझ के और उनके बारे में समझ के ही करना चाहिए, उन राइट का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये पावर है लाओ मैं ये बोल देती हूँ ये कर लेती हूँ, नहीं। जहां नीड है, जहां आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, सिर्फ वहां उन राइट्स का यूज करिए, हर जगह पे विक्टिम कार्ड वाली तरह से उन्हें प्ले करना ना शुरू करिए, वो बाकी वुमेन्स के लिए फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

आखिर एक मर्द को चाहिए क्या, क्या डिमांड होती है उनकी? देखिए उनकी डिमांड बहुत बड़ी नहीं होती। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अक्सर हमने सुना है ना, एक महिला को समाज में ये चाहिए, एक महिला को समाज में चाहिए, कभी हम बात ही नहीं करते एक पुरुष को समाज में क्या चाहिए। देखिए पुरुष को बहुत आसान चीजें चाहिए, गर्म खाना चाहिए, टीवी का रिमोट चाहिए और संडे को थोड़ी देर एक्स्ट्रा सोना चाहिए, शायद वो भी थोड़ी देर। लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट से हट के बताता हूँ, एक इंसान को क्या चाहिए, उसे चाहिए कोई उसको सुन ले, उस पे भरोसा कर ले, जब वो मेहनत कर रहा है ना तो उस मेहनत को कोई नोटिस करे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दे, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और थोड़ी सी एप्रिसिएशन, बस इंसान वहां पर पिघल जाएगा, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो आपको मूवी नाइट भी ले जाएगा, वो आपको डेट नाइट पे भी ले जाएगा, वो आपको डिनर कराने भी ले जाएगा, वो आपके लिए शॉपिंग भी कराएगा, बट वो जो चीज कर रहा है उसे आप धीरे धीरे अप्रिशिएट करते रहिए, उसकी उस चीज में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाइए, उसको सजेशन देना शुरू कर दीजिए। मेन से बेटर इंसान कोई आपके लिए फिर हो ही नहीं सकता अगर आप इस तरह से उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे। एक इंसान को हमेशा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कभी कभी उसको ये चाहिए कि वो जो बता रहे हैं ना आप वो सुन लो और सुन के अपने तक रख लो, जाके आगे ना हो तो पता है आज इसने कोई, अपने तक सुनो, उसे वहीं खत्म करो। मेन से सिंपल और सॉर्टेड इंसान आपको और कोई नहीं मिल सकता। ये एज अ वुमेन का जो मसीहा होता है ना, मैं उनको ये धीरे धीरे टिप देता रहता हूँ ताकि वो अपने जो मेन हैं या अपने जो बेटर हाफ है उन्हें और बेटर तरीके से समझ सके। तो आज से ये कोशिश करिएगा, शायद आपको वो हल्की हैप्पीनेस जो है ना वो और इंक्रीज होती हुई नजर आए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथात हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एन एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

तो जितने भी फरीदाबाद वाले हैं, ये अपनी फिटनेस के लिए दौड़ने के लिए रेडी हैं कि नहीं है? अभी तक नहीं हुए? अरे मैं आपको बताता हूँ, आपको रेडी होना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन फिर से एक बार आ रहा है अपने 2026 के एडिशन के साथ, जहाँ देश भर के रनर जो हैं उनमें जोश और जज्बा फिर से उतना ही एंथुसियास्ट के साथ हमको देखने मिल रहा है। 27 सितंबर 2026 सूरज कुंड मेला ग्राउंड से होने वाली है ये मैराथन की शुरुआत, और अभी तक 1,00,000 से ज्यादा इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आप पीछे ना रह जाए तो रजिस्टर अभी कर लीजिएगा। और इसके बारे में डीसी आयुष सिन्हा जी ने भी बताया है कि इवेंट का जो उद्देश्य है वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, और नशा मुक्त हरियाणा का जो संदेश है वो पूरे हरियाणा तक पहुंचाना है, पूरे फरीदाबाद के लोगों तक पहुंचाना है। मैराथन में जो रेसेस होंगी वो होंगी 21.1 किलोमीटर की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाली है। आपका टाइम जो है वो सब कुछ मेजर करा जाएगा, और कुल 10,00,000 रुपए का प्राइज मनी भी रखा गया है। तो इस प्राइज मनी के लिए ही दौड़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अपने आप को अभी रजिस्टर करिए इनकी वेबसाइट पे जाके www.faridabadhalfmarathon.in पर। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ये मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है वो एक दिन आपकी रनिंग जर्नी को, आपकी हेल्थ की जर्नी को बिगिन करने में आपकी मदद जरूर करे। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके। गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनारे गुनगुन गुनाये गाना रे।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियंट इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था। तो लोग तब लगाते थे, फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके। आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि ये आज से 5000 साल

रेडियो महारानी

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए।

101.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और नारी नंबर वन, ये शो की जब बात होती है ना तो हम एक वुमेन को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी से

0: क्या सीख सकती हैं उसकी बात यहाँ पर करते हैं। बट आज उनके साथ प्लस वन में हमारे साथ कोई है जो आपके लिए सस्पेंस है और वो सस्पेंस हम थोड़ी देर बाद रिवील करेंगे। कमलप्रीत जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।
0: और वो प्लस वन की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ अंशुल जी है। अंशुल जी बिजनेस पार्टनर है।
2: जी हम दोनों बिजनेस पार्टनर है। हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की है Lotus Club at Happiness। हम दोनों अराउंड 23 इयर्स एक एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम कर चुके हैं एज अ फ्लाइट परसर एंड एयर होस्टेस। आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस टू सेटल डाउन। सो ये हमने स्टार्ट करा।
0: तो बस यही ये जो जर्नी थी ना आपकी ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी एयर होस्टेस वाला वो और उसके बाद छोड़ के वापस आना। तो मेरे को लगता है ऐसी एक कोई सेटल जॉब जो लोगों के लिए ड्रीम जॉब है वो छोड़ना अपने आप में कितना टफ रहा होगा। तो मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा। 22 साल की एक लंबी कैबिन क्रू वाली जर्नी आपकी जो थी उसके बाद आपने आके बिजनेस शुरू करा। मैम क्यों छोड़ा?
1: अच्छा हमने पूरा वर्ल्ड घूम लिया था। अब तो मतलब बिल्कुल नहीं रहा कि हमें बाहर जाना है ये देखना है वो करना है। सब देख लिया। अभी हमें सेटल होना था क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है 10 years old। आई नीड टू गिव हिम आल्सो टाइम। तो मैंने सोचा नहीं और प्लस अभी हमने सोचा नौकरी नहीं करेंगे अभी हम मालिक और मालकिन बनेंगे। सो इसीलिए फिर हमने सोचा हम अपना ब्रांड चालू करेंगे लोटस लव एट हैप्पीनेस।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं, थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: है एंटरप्राइजिंग दीवार से।
1: अच्छा, जब हमने ये सोचा कि हम अपनी जॉब छोड़ेंगे,
0: हाँ,
1: ठीक है, हमने अपना बिजनेस चालू करना है,
0: हाँ,
1: हमने अपना ब्रांड चालू किया लोटस लव एट हैप्पीनेस, अब हमने चालू तो कर लिया लेकिन मैं लोगों के पास पहुंचूंगी कैसे? सो एंटरप्राइजिंग डिवर्स शॉपिंग पेज जो आता है ये बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे लिए, क्योंकि मैंने इनको पहले अप्रोच किया, मुझे लगा क्या पता ये मुझे अपने रूप में आने भी देंगे या नहीं आने देंगे, बट दे वर सो गुड जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे इतनी प्यार से एक्सेप्ट किया, और जब मैं इनके प्लेटफॉर्म में आई, मेरा फर्स्ट लाइव सेशन इनके प्लेटफॉर्म में था, और धीरे धीरे धीरे करके मतलब इन्होंने हमें वो एक्चुअली एक्सपोजर दिया है, जो कस्टमर्स हमें मिले, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, सो आई एम सो ग्रेटफुल कि दे केम इनटू माय लाइफ, एक्सेप्टेड मी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ देम।
0: बट मैं चाह रहा हूँ ये लोटस लव और हैप्पीनेस से कोई कनेक्ट करना चाह रहा है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किन किन वेज से कनेक्ट कर सकते हैं?
1: अच्छा, बहुत है, हमारे वेबसाइट अभी हमने लॉन्च किया है www.lotuslovehappiness.com, सो आप डायरेक्टली वहाँ पे शॉप कर सकते हो, हमारे दो नंबर्स हमने दिए हैं, उस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो,
0: नंबर बता दीजिए,
1: नंबर
0: मेरे पास तो है,
1: हाँ जी,
0: बट ऑडियंस तक कैसे जाएंगे?
1: बिल्कुल, सो यू कैन मैसेज अस एट 9818130718 एंड 8383870273, कोई भी नंबर्स पे मैसेज करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हम हर जगह हैं, सो डू जॉइन अस।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, मंडे का मतलब होता है ना कि बॉडी ऑफिस में है या कॉलेज पहुंच चुकी है, लेकिन दिमाग अभी भी संडे के बेड पर पड़ा हुआ है। और ऊपर से दोपहर के 2 बजते ही ना एनर्जी बोलती है कि बस भाई, अब मुझसे और काम नहीं होने वाला। लेकिन इसी स्लीपी मंडे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हूँ आरजे पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर, जहाँ मंडे का मूड भी फिल्मी होना कंपलसरी है भाई। और अगले 2 घंटे में मूवीज, ओटीटी, सॉन्ग्स, ट्रेलर्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया की वो सारी बातें होंगी जो आपके बोरिंग मंडे को थोड़ा मसालेदार बना दे। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और मेरी कंपनी एंजॉय कीजिए। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल रखो।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026 वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कभी नोटिस किया है कि कुछ फिल्म मेकर्स के लिए परफेक्ट का मतलब परफेक्ट नहीं, परफेक्ट से भी थोड़ा ऊपर होता है। और संजय लीला भंसाली का नाम आए तो ये बात और भी रिलेटेबल हो जाती है। उनकी मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहा है कि फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जब भंसाली जी ने एडिट टेबल पर फिल्म को देखा ना, तो उन्हें लगा कि वॉर के कुछ सीन्स को और बेटर किया जा सकता है। और बस फिर क्या था, जो सीन्स शूट हो चुके थे ना, उनकी दोबारा शूटिंग का डिसीजन ले लिया गया। मतलब आप देख रहे हैं भाई, डेडिकेशन देखो आप। और रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरे गांव में इन एडिशनल वॉर सीक्वेंसेस को शूट किया जाएगा और ये स्केड्यूल करीब एक हफ्ते तक का हो सकता है। और ये फिल्म ऑलरेडी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि भाई रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे। मतलब कास्टिंग में तीन बड़े नाम ऑलरेडी हैं और डायरेक्शन में भंसाली साहब जी की परफेक्शन है। अब पिक्चर कितनी ग्रैंड होने वाली है इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। और फिलहाल एडिशनल शूटिंग की वजह से लव एंड वॉर की रिलीज में डिले हो सकता है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, एंजॉय कीजिए ये गाना। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, मैं हूँ आज पलक आप सभी के साथ ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे

हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कुछ गाने ना सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि सीधा यादों में सेव हो जाते हैं, और राजश्री की फिल्म्स का म्यूजिक तो वैसे भी ना एक अलग ही इमोशन लेकर आता है। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विभा, इन मूवीज का नाम सुनते ही इनके गाने दिमाग में ऑटोमेटिकली बजने लगते हैं। और अब इसी म्यूजिकल लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं सूरज आर बरजात्या की अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक, जो हाल ही में रिलीज हुआ है, और इस गाने को आवाज दी है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, और म्यूजिक कंपोज किया है हिमेश रेशमिया ने। मतलब मेलोडी, रोमांस और राजश्री वाली फैमिली वाइब, ये कॉम्बिनेशन तो काफी इंटरेस्टिंग है भाई। और सबसे खास बात यह है कि हिमेश रेशमिया प्रेम रतन धन पायों के बाद एक बार फिर सूरज बरजात्या के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और शर्वरी लीड रोल में आए हैं, और ये फैमिली एंटरटेनर 27 नवंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल राजश्री वाली मेलोडी और फील गुड रोमांस पसंद है ना, तो ये नया टाइटल ट्रैक आपकी प्लेलिस्ट में जगह बना सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

0: का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: Dame un gr.
2: ¿Un qué?
1: Un gr.
2: ¿Un qué?
1: Dame un tú.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, रश्मिका मंदाना को आपने रोमांटिक रोल्स में तो काफी देखा है, लेकिन अब एक्ट्रेस एकदम नए अवतार में नजर आने वाली हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म मायसा का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर देखते ही ना एक चीज क्लियर है कि इस बार रश्मिका सिर्फ क्यूट स्माइल और रोमांस नहीं बल्कि प्रॉपर एक्शन मोड में है। और टीजर में उनका करेक्टर मुश्किल हालातों से लड़ता हुआ नजर आता है और एक सीन तो काफी अटेंशन ग्रैब कर रहा है जहां रश्मिका पानी के अंदर एक हंसिया लेकर बैठी हुई दिख रही है। और इस फिल्म की स्टोरी एक पावरफुल फादर डॉटर रिलेशनशिप के अराउंड बताई जा रही है, लेकिन इमोशंस के साथ एक्शन का डोज भी फुल है भाई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मायसा से रविंद्र पुले डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं और ये फिल्म 27 नवंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। मतलब रश्मिका का ये एक्शन वाला अवतार देखने के लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.
7: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो. गाना चला तो. गाना चला

0: गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हम उसको कितनी बार भी सुन लें बोर बिल्कुल नहीं होते। और ऐसा ही एक सुपर हिट ट्रैक है, प्यार दिलों का मेला है, सलमान और करिश्मा कपूर की फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से। डेविड धवन की ये फिल्म 2000 में आई थी, लेकिन इसका ये गाना ना आज भी स्पेशली यंग लिसनर्स के बीच छाया हुआ है। और अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में ये सॉन्ग फर्स्ट लव वाली फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। वो एक्साइटमेंट, वो बटरफ्लाईज और वो थोड़ी सी बेचैनी, और जब दिल को खुद समझ नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है यार। और हाँ, स्क्रीन पर सलमान और करिश्मा की केमिस्ट्री और साथ में उनका डांस, भाई मतलब गाना पुराना हो सकता है लेकिन वाइब बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। और अब गानों की बात मैंने कर ही दी है तो वक्त हो चुका है गाने का। एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

बहुत कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

अच्छा सोशल मीडिया पर किसी फिल्म का टीजर आए और उसके बाद डिस्कशन ना हो, ऐसा आजकल बहुत मुश्किल हो गया है ना। अभी एक अपकमिंग मूवी महाकाव्य श्री रामायण कथा का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा माँ सीता का करेक्टर प्ले कर रही है और ये फिल्म उनका एक्टिंग डेब्यू भी है। लेकिन टीजर के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ यूजर्स कास्टिंग, विजुअल्स और बीएफएक्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और इस फिल्म को कंपेयर करा जा रहा है नितेश तिवारी की फिल्म रामायणा से। वहीं दूसरी तरफ अंजलि ने अपने करेक्टर को लेकर कहा है कि माँ सीता का रोल उनके लिए बहुत इमोशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा एक्सपीरियंस रहा है। और अब इस मूवी को लेकर ऑडियंस का फाइनल रिएक्शन क्या होने वाला है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि टीजर देखकर ओपिनियन बनाना और पूरी फिल्म देखकर ओपिनियन बनाना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 25 सितंबर को। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑन 89.6 रेडियो।

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अब अगर आपको प्यार का पंचनामा दे दे प्यार दे और तू झूठी मैं मक्कार टाइप रोम कॉम्स पसंद है ना, तो ये अपडेट बिल्कुल आपके लिए है भाई। क्योंकि लव रंजन एक बार फिर लव रिलेशनशिप्स और ऑब्वियसली थोड़े रेड फ्लैग्स लेकर आ रहे हैं, और इस फिल्म का नाम है पहला प्यार दूसरी बार। और इसी फिल्म के थ्रू कुछ नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिनका नाम है अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वेद, सरगुन कौर, तुषार छिब्बर और कुणाल वेद। जी हाँ, ये सभी नाम आपको मेन रोल्स में नजर आएंगे। और इस फिल्म की टैगलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। टैगलाइन कुछ इस तरह है कि पुराने क्रश, पापी दोस्त और पहला प्यार, मतलब रेड फ्लैग्स नहीं, पूरा रेड कार्पेट देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अनुज सैनी, और ये आपको देखने को मिलेगी 23rd October को। नाम ही बता रहा है कि पहला प्यार है तो दूसरी बार मौका देने में बुराई क्या है, है ना। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: और बस गाइज, आज के फिल्मी फ्लेवर का भी यही होता है शट डाउन। दो घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला ना। थोड़ी बातें, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा एंटरटेनमेंट, बस इसी के साथ आज का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना बाकी का दिन एंजॉय कीजिए, जो कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, और बीच बीच में ना थोड़ा ब्रेक लेना मत भूलना। मैं हूँ पलक, कल फिर मिलूंगी आपसे इसी टाइम इसी जगह। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हेलो हेलो फरीदाबाद, देखिए भाई फिर से आ गई हूँ करने आपसे बातचीत ढेर सारी। और आज मैं स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुणाल फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल, और जिनसे आज ना हम बहुत ही अमेजिंग डे पर बात करने वाले हैं, जो है अल्जाइमर डे। तो आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है और इस डे पर ना बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ डॉक्टर के साथ, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो मैं आज डॉक्टर से डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज मैं ना आजकल बहुत सारी चीजें भूल रही हूँ यार, फोन मेरे हाथ में होता है, फोन ढूंढ रही होती हूँ। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए ना आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेडियो महारानी के स्टूडियो में आपका। डॉक्टर आज हम अल्जाइमर डे के पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपसे जानने के लिए। तो पहले ये बताइए, हम सब कभी कभी चीजें रखकर भूल जाते हैं, किसी का नाम याद नहीं आता या कोई छोटी बात जो मिस हो जाती है, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली को कैसे समझना चाहिए कि ये नॉर्मल एजिंग है या फिर फॉरगेटफुलनेस है या फिर ये अल्जाइमर है? अगर मैं बात करूँ, ऐसे कौन से वार्निंग साइन है जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए?
1: देखिए बहुत ही जरूरी है हमें ये बात समझना कि आज के डेट में कॉमनली जब हम लोग बात करते हैं भूलने की बीमारी को, एंड ये भूलने के सिम्टम इतना कॉमन है आज की डेट में कि चाहे वो यूथ हो, चाहे वो इवन स्कूल के बच्चे या इवन जो है जो एल्डरली पॉपुलेशन, बहुत कॉमनली हमारे पास आते हैं। एंड सबको जब वो बड़ा रूटीन है कि चैट जीपीटी पे देखा, गूगल पे देखा, तो भूलने की बीमारी देखा तो पता चला जी उसमें दूसरे डिमेंशिया लेके आ रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हर भूलने की बीमारी डिमेंशिया नहीं होती या हर भूलने की बीमारी खतरनाक नहीं होती। यस, ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारी अलार्मिंग साइंस क्या होते हैं या हम कब समझें या पहचाने कि यार ये डिमेंशिया का दस्तक हो सकता है। सो उसके लिए कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें जरूर समझने चाहिए। पहली चीज, यस, भूलने का एक प्रॉब्लम कॉमन होता है डिमेंशिया के पेशेंट में, अल्जाइमर्स के पेशेंट में। अब ये भूलना कैसा भूलना होता है, ये भूलना का मतलब होता है जैसे बहुत कॉमनली आप चीज़ें रख के भूल जा रहे हो, और केवल रख के ही नहीं भूल रहे हो बल्कि कई बार चीज़ों को आप ऐसी जगह छुपा दे रहे हो जिसको आपको फिर ध्यान भी नहीं आ रहा। और कभी कभी लोग इस तरह के भी सिम्टम्स दिखाते हैं कि वो आपने रख दिया और फिर अपने ही घर वालों को बोल ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मेरी चीज़ को उठा लिया या आपने मेरी चीज़ को चुरा लिया। दूसरी कॉमनली, उनको याद भी नहीं आ पा रहा है कि उन्होंने कहाँ रखा, क्योंकि नॉर्मल भूलने में कई बार क्या होता है, हम अपने दिमाग में जोर डालें तो कई बार हमें याद आ जाता है, पर डिमेंशिया पेशेंट में जब वो चीज़ें भूलने लगते हैं या चीज़ें वो रख देते हैं तो उनको नॉर्मल बहुत टाइम लगता है याद आने में, कई बार याद भी नहीं आता। दूसरी चीज़, नॉर्मल भूलने में मतलब कभी कभी आप भूल रहे हो, ये हमारे साथ भी होता है। जैसे हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, हमने अपनी चाबी कहीं रख दी वो हम भूल गए, चश्मा कहीं रख दिया हम वो उठाना भूल गए, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कई बार एजिंग के साथ बढ़ जाती है, जैसे हम बोलते हैं उम्र के साथ ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बट डिमेंशिया में क्या है, जब ये बहुत रूटीनली होने लगे, बहुत फ्रिक्वेंटली हमें दिखने लगे, और ये कहीं ना कहीं हमारी डेली फंक्शन को भी इफेक्ट कर रहा हो, मतलब उसकी वजह से आपके घर वालों को लगने लगे कि नहीं ये इरिटेशन बढ़ रही है इनकी वजह से, या बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा काम कर रहे हैं ये भूलने का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज और डेली लेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज मतलब जैसे कुकिंग, एक फीमेल्स के लिए अपने खाना बनाना बहुत कॉमन चीज़ होती है कि वो खाना बना रहे हैं तो कितना नमक डालना है, चाय बना रहे हैं कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितने लोगों का खाना बना रहा है, चार लोग का खाना बनाना है, पता चला 10 लोग को खाना बनाना है। रूटीन, जैसे एक ऑफिस वाले को क्या है, अपने अपॉइंटमेंट्स हैं उसकी, वो अपने घर से निकल रहा है ऑफिस पहुंचने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक जा रहा है, जाना आपको आगे है, आप वहीं पे कंफ्यूज हो जा रहे हो कि मुझे कहां पहुंचना है। ड्राइविंग में उसको दिक्कत होने लगी, कई बार लोगों का एक्सीडेंट्स होने लगते हैं क्योंकि उनके जो ड्राइविंग का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। एक शॉपिंग, जैसे एक अगेन जैसे लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए, वहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे वो पैसे का हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स, जो डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वहाँ पे वो गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉप में, वहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कितना पैसे देने हैं, कितना पैसे लेके आने हैं घर पे। ये जितने सिम्टम्स हैं ये बहुत अलार्मिंग होते हैं, तब पहचान लेना चाहिए कि हाँ ये एक डिमेंशिया का दस्तक हो सकता है, और तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रवि याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है। तुम कहा करते थे कि This is the social song.
1: रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पम्प्ड इन, रेडी टू रन। दौड़ेगा फरीदाबाद।

रेडियो महारानी कुछ

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आर्जेंटली। और आज मैं स्टूडियो में अकेली रही हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर। सर डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई पेशेंट मेमोरी लॉस लेकर आपके पास आता है तो आप डायग्नोसिस तक पहुँचने के लिए किन चीजों को एवल्यूट करते हैं? क्या स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन, मेडिसिन, विटामिन की कमी या फिर कोई और कंडीशन जो मेमोरी को इफेक्ट कर सकती है, ऐसे कौन से रूट कॉज है जिसकी वजह से पता चलता है कि अल्जाइमर है?

0: स्टोरेज वाली कहानी है, किसको हमें स्टोर करना है, ये सारी चीजें स्लीप में होती है, एक फेज ऑफ स्लीप में होती है। अब आज के युवाओं में या आज की जो हम लोग देख रहे हैं जनरेशन में, लोगों के स्लीप की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। और ऐसा नहीं कि वो जान के, कई बार ऐसा भी है कि लोगों की स्ट्रेस लाइफ ऐसी है, वर्किंग कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे लेट नाइट तक जग रहे हैं, स्लीपिंग ले रहे हैं प्रॉपर, ऐसे में मेमोरी प्रॉब्लम्स होने का बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। जब यही चीज़ रूटीन में आ जाए, बहुत कॉमन कल्चर हो गया है नाइट शिफ्ट करना, डे टाइम पे रहना, डे टाइम पे सोना, ऐसे में मैं बोलना चाहूँगा यहाँ बहुत लंबे टाइम तक नाइट शिफ्ट करोगे, डे टाइम पे रहोगे, तो हमारी जो इनर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जो हमारी फेजेस ऑफ स्लीप रात की होती है वो दिन में नहीं पूरी हो सकती। तो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोगों में आगे जाके मेमोरी की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कई लोगों को कहता हूँ कि नाइट शिफ्ट ऐसा नहीं कि एकदम आप बंद कर दो, बट उस पर कंट्रोल चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रूटीन बना लो। इसीलिए बहुत जरूरी है हमारी स्लीप पे कंट्रोल रखना। एंड सेकेंडली, यस, स्ट्रेस अगेन इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से हमारी मेमोरी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बिकॉज हम अटेंशन पावर हमारी कम हो जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं चीज़ों को। पॉलीफार्मेसी मतलब दवाइयाँ, बहुत इमदा जवाब आपके क्वेश्चन की, दवाइयों की वजह से भी होता है, यस। आज की डेट में बहुत कॉमनली हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत सी दवाइयाँ खा रहे हैं, मिक्सचर ऑफ दवाइयाँ खा रहे हैं, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और हमारी मेमोरी को भी डाउन करती हैं। तो ऐसे में कभी भी आपको मेमोरी की प्रॉब्लम हो तो आप जब भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्लीप कैसी है, आपकी स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी दवाइयाँ क्या क्या चल रही हैं, आपका हेडेक्स अगेन सिर दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई में हमें देखा है, ये साइंस कहती है, हमारी स्टडीज़ कहती है, जब एक सिर दर्द बहुत लंबे टाइम तक चले या सिर दर्द कंट्रोल ना रहे तो लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे में ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट से जब भी मिले तो हमें पता होनी चाहिए, ताकि न्यूरोलॉजिस्ट समझ सके कि हाँ कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स दिख रही है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।
2: हो गया।

0: जेल में खाना तो अच्छा होगा ना।
1: खाना छड़, पीने की सोच, बियर शर सब बंद पहन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस, पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।
3: डॉक्टर कॉलिंग।
4: Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum hona hi chahiye running se pehle.

आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन कंसिडरिंग डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है। हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है। जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें। डॉक्टर कॉलिंग।

0: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ,
1: टाइम जा रहा है भाई, तो करे रिस्टार्ट।

0: restart.
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंशी और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे पर। डॉक्टर, अगर बात करें डायग्नोसिस की, अर्ली डायग्नोसिस से एक्चुअल में क्या बदलता है? बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना कई फैमिलीज की, तो कई फैमिलीज डायग्नोसिस से इसलिए बचती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्जाइमर का नाम जानने से क्या फायदा, जब डिसीज को लेकर ट्रीटमेंट लिमिटेड है। आप उन फैमिलीज को क्या समझाना चाहेंगे? अर्ली डायग्नोसिस होने से पेशेंट के ट्रीटमेंट और सिम्टम को मैनेज करना फ्यूचर में कितना इजी हो सकता है और कितना डिफरेंस पड़ता है इन सब का एक पेशेंट के ऊपर है।
2: बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली डायग्नोसिस। आज इस साल तो हमारा स्लोगन ही यह है कि अर्ली वी डायग्नोस बेटर द आउटकम, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो साइंस है बहुत इवॉल्व कर चुकी है। आज डिमेंशिया अल्जाइमर्स में हमारे कुछ ऐसी दवाइयां आ चुकी हैं जिसको हम देने से हमारी डिजीज का प्रोग्रेशन, मतलब जो उसका बढ़ने का जो उसका रास्ता है, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि कभी भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें तो हम ये नज़रअंदाज ना करें कि ये उम्र के चलते हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। तुरंत इसका जांच कराएं। जब भी हमारे पास मरीज आते हैं मेमोरी की प्रॉब्लम लेके, लैंग्वेज की प्रॉब्लम लेके, कि चीज़ें वो भूल रहे हैं, चीज़ें शब्द नहीं याद आ पा रही हैं या चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई है, तो हम लोग कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव असेसमेंट। हम लोग कुछ कॉग्निटिव असेसमेंट डिटेल में करते हैं। ब्रेन के अलग अलग फंक्शन को हम लोग उस असेसमेंट में देखते हैं, लैंग्वेज, मेमोरी, अटेंशन, जो हमारा जजमेंट है, विजुअल स्पेशल है, ये अलग अलग हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग कॉग्निटिव असेसमेंट करते हैं। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे आपने बताया विटामिन के डेफिशिएंसीज, कई बार लिपिड की गड़बड़ी की वजह से, और कुछ कुछ पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से, तो ये सारे हम लोग चीज़ें स्टडी करते हैं। कुछ स्पेशलाइज टेस्ट, जैसे स्पेशल टेस्ट में EEG, MRI ब्रेन, आज के डेट में वी डू ऑल्सो फंक्शनल MRI। फंक्शनल MRI मतलब ऐसा MRI जब हमें ब्रेन के एग्जैक्ट फंक्शंस को बता दे, वो पेट स्कैन कहते हैं उसको, वो भी हम करके देखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जांच जो हम लोग अल्जाइमर्स के लिए कहते हैं, आज के डेट में बायोमार्कर देखते हैं। बायोमार्कर मतलब कुछ ऐसे स्पेशलाइज टेस्ट जिसको हम देख के बता सकते हैं कि वाकई में अल्जाइमर्स है कि नहीं है।
1: ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजी अंशली और आज मैं रेडियो महारानी पर बात कर रही हूँ वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में। सो डॉक्टर, अगर कोई पर्सन अपनी ब्रेन हेल्थ को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करना चाहता है तो आज से किन हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए, और साथ ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एक्सरसाइज, इवन स्लीप, हियरिंग, सोशल इंटरेक्शन, मेंटल स्टिमुलेशन और डाइट का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, और अगर घर में अल्जाइमर का पेशेंट है तो केयर गिवर को पेशेंट की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन करते हुए उनकी सेफ्टी और अपने खुद के वेलबींग कैसे मैनेज करनी चाहिए।
1: देखिए, सबसे जरूरी है हमें ये जानना कि जैसे हम अपने हेल्थ को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें मेंटली फिट बहुत जरूरी रहना। उसके लिए हमें पता होना चाहिए आज से किस किस हैबिट्स पे हम काम करें। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो बताए गए हैं, जिसको हम अगर हम कंट्रोल करें तो हमें आगे जाके मेमोरी की प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर लर्निंग। हम कभी भी अपनी लर्निंग हमें बंद नहीं करनी चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। आज इतने सालों के बाद भी मेरी हमेशा हैबिट रही है कि मैं हमेशा हर दिन उठ के कुछ ना कुछ पढ़ूँ और कुछ टाइम दूँ। तो मुझे लगता है ये सबको फॉलो करना चाहिए। कभी भी, चाहे हम कितनी भी उम्र हो जाए, हमारी लर्निंग कर्व कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम क्या नया स्किल्स सीखें, हम कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करें, तो वो लर्निंग कर्व हमेशा आपका कंटिन्यू पैरेलली चलना चाहिए। बहुत अलग रिस्क फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंट्रोल रखना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल को तो खासकर हमें कोशिश करनी है कट डाउन करें, बिकॉज स्टडीज कहती हैं आगे जाके जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल के सेवन करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें डिमेंशिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्लीप, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, स्लीप इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। तो कोशिश करना चाहिए हमारी स्लीप बहुत अच्छी रहे। और इसके साथ साथ स्ट्रेस और एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोशिश करें हमेशा अपने को फिजिकली एक्टिव रखें, सोशली इंगेज रहें, सोशली कनेक्ट करें, क्योंकि आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, हम एक एक एक रूम के अंदर से मटके रह गए। हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम फोन पे हैं, लैपटॉप के आगे हैं, और हमारा कहीं ना कहीं वो एक सोशली कनेक्ट धीरे धीरे कम हो गया है। तो ऐसे बीमारियों से बचने के लिए हमेशा कोशिश करें कि सोशली आप जितना कनेक्ट कर सकें, लोगों से मिलें, परिवार वालों से, दोस्तों से, तो जितना ज़्यादा आप सोशली अपने आप को इंगेज रखोगे, उतनी बहुत बहुत बहुत कम चांसेस हैं आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम होने के।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। और यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे अल्जाइमर है, या फिर आपके आसपास कोई आपका कलीग या फिर कोई आपका नेबर अगर इस बीमारी से गुजर रहा है, तो उन्हें केयर दीजिए, उन्हें एक्स्ट्रा प्यार दीजिए और उनके साथ डिग्निटी के साथ रहिए। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

मंडे की एक बात तो अच्छी है कि ये भी चला जाता है बहुत जल्दी, और एक बात बुरी ये है कि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ, स्वागत है। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर रेडियो का गौरव आ चुका है, शाम हो गई है। आज पता सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह सुबह मुझे स्मॉगी मॉर्निंग देखने

को मिली, एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट। लाइक कल भी ऐसा सही हुआ, आज भी ऐसा ही हुआ, और ये आने वाले कुछ दिन में बढ़ने वाला है। और अभी तो दिवाली भी नहीं आई है, अभी से ही आसमान में ये हल्का फुल्का स्मॉग देखने को मिल रहा है। और बस मैं क्या बोलूँ अब इसके अलावा, क्योंकि गले में खराश शुरू हो चुकी है लोगों के, वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मानसून और चेंजिंग मौसम। मानसून जा चुका है, एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इस टाइम? इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुबह और शाम को हल्का हल्का सा ठंडा ठंडा सा फील होना शुरू हो चुका है, और बारिश का कोई अता पता नहीं, अता पता लापता हो चुकी है बारिश, और कोई चांस नहीं है आने वाले कुछ दिन तक। तो आप लोगों को क्या लग रहा था, बारिश अब होगी? मुझे तो विश्वास था कि बारिश अब होगी ही नहीं, लास्ट हुई थी जन्माष्टमी के दिन, बस उसके बाद से तो बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। खैर, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। अब अगले चार घंटों के लिए मैं आ गया हूँ, और देखो पूरे फरीदाबाद के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो फरीदाबाद से रिलेटेड जो भी बातें आपको मुझसे करनी है या फिर मुझे आपसे करनी है, तो वो यहीं होगी रेडियो महारानी 9.6 पर। और हाँ, एक और वादा मैं आप सभी से करता हूँ कि मेरे शो में सबसे कम एड ब्रेक्स होंगे, सबसे ज़्यादा गाने चलेंगे, और रेडियो महारानी पर आप सभी के साथ खूब सारी मस्ती भी होगी। और इसी बीच अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल्स शेयर करनी है हमारे साथ, तो हमारा एक नंबर है सिंपल सा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए ये गाना।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: क्या आप वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह इसी बात पर बहस जारी है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर शो चल रहा है 4896 एंड डियर प्लांट ईटर्स। चिकन नेवर गेव अस ऑक्सीजन, चिकन नेवर गेव अस शेड, लॉस ऑफ चिकन नेवर कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, देन व्हाई ईट द प्लांट्स एंड ट्रीज। ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से, ये सब बातें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है उसमें एक पोस्टर लगा है, वो वायरल हो रहा है और इसके पीछे बहस छिड़ गई है ऑनलाइन। और देखो, हमेशा से ये होता ही आया है कि अगर आप लोग भी किसी एक ग्रुप में हैं शामिल और उसमें कुछ वेजिटेरियन लोग हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो आपस में पता नहीं क्यों वो एक दूसरे को कोसते रहते हैं। अरे तुम तो पेड़ पौधे खा जाते हो, अरे तुम तो इंसानों को खा जाते हो, ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ अभी ऑनलाइन भी शुरू हो चुकी है, इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत लिखा है ये, एंड रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा गलत है। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल सही लिखा है। तो मैं सभी से पूछना चाहूँगा, फरीदाबाद से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये सब चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत थी क्या? ये रेस्टोरेंट ने लिखा है कि डियर प्लांट ईटर्स, चिकन ने हमें कभी ऑक्सीजन नहीं दी, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती, तो हम पेड़ पौधे क्यों खाए, ये कौन सी बात है? फल फूल जो होते हैं वो आपके लिए ही तो होते हैं, और हमेशा फल फूल कच्चे भी खाए जा सकते हैं, यही मैं बताना चाहता था। मगर हाँ, नॉनवेज कच्चा नहीं खाया जा सकता। खैर, मैं किसी भी एक की साइड नहीं लूँगा और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गाने चलाऊँगा और आप लोगों की राय ज़रूर लूँगा। उसके लिए नंबर है मेरा 9654896896, और उसके साथ साथ आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कर और जिसको सुनकर सच में दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ साथ फरीदाबाद वालों, आप लोगों के लिए फरीदाबाद हाफ मैराथन होने वाली है 27 सितंबर को। सूरजकुंड मेला ग्राउंड से रेस शुरू होगी। रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्राइजेज हैं आप लोगों के लिए। 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर रन करने वालों के लिए टाइम रन है वैसे तो ये, और इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेज हैं। तो आप लोग इसमें रजिस्टर कर दीजिए, सिर्फ 5 दिन बाकी है। और रन फॉर अ कॉज, ड्रग फ्री हरियाणा। तो आप सभी को बता दूँ 21.1 किलोमीटर की रन है जो कि 6 बजे फ्लैग ऑफ होगा। और इसमें 3 घंटे का टाइम दिया गया है आपको दौड़ने के लिए। 10 किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ उसमें 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है, और 1.5 घंटे में तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे, आई गेस कर लोगे। और फिर उसके साथ साथ आप लोग 5 किलोमीटर रन भी कर सकते हैं, दैट्स अ फन रन। और इसमें कोई टाइम नहीं, फ्लेक्सिबल पेस है, आप लोग कितने भी तेज़ी से या धीरे से चल सकते हैं इसमें। और आप इसे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं इस पर। कैसे? आपको जाना है faridabadmarathon.in पर और वहाँ जाके आपको अप्लाई कर देना है। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर 1,27,000 लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और डिस्काउंट कूपन भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर। एंड साथ ही साथ कुछ कुछ टिकट्स तो सोल्ड आउट भी हो चुकी है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए ऐसे ही और भी डिटेल्स लेकर आता रहूँगा फरीदाबाद के बारे में। हाँ, एक और चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अभी से अगर रन करना शुरू नहीं किया है ना तो अब कर दीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और अभी गाना चलाते क्योंकि म्यूजिक इज ऑलवेज द बेस्ट मेडिसिन।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आप में से बहुत सारे लोगों ने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि अब दिल्ली तो अब दूर नहीं।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? दिल्ली तो अब दूर नहीं, दिल्ली तो अब दूर नहीं, मगर अब आप लोग बोलेंगे सिलीगुड़ी तो दूर नहीं, क्योंकि दिल्ली से लेके सिलीगुड़ी तक आप सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाओगे, और वो भी बाय ट्रेन। एंड आई एम नॉट जोकिंग। देखो सिलीगुड़ी कैसे जाएगी, सबसे पहले दिल्ली से निकलेगी ट्रेन, नोएडा जाएगी, नोएडा से जेवर, जेवर से आगरा, आगरा से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज, फिर बनारस, फिर बक्सर, आरा, पटना, मुकामा, और फिर बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, और फिर आखिरी स्टेशन सिलीगुड़ी। और आप सभी को बता दूं ये 1557 किलोमीटर लंबा रूट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये है यूपी बिहार से होते हुए गुजरने वाली बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन का एक रूट, प्रस्तावित रूट सामने आया है, और बोला जा रहा है मात्र 7.25 घंटे में आप दिल्ली से वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। और अगर ये पॉसिबल हो गया ना तब तो मज़ा सा ही आ जाना है। मैं कह रहा हूँ फरीदाबाद से लोग खूब सारे जाएंगे, क्योंकि फरीदाबाद से दिल्ली दूर है ही नहीं, और सिलीगुड़ी भी फिर दूर नहीं रहेगा, सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और बाहर जाने का आपको तो पता ही है, बाहर जाने के लिए पहले 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, फिर उसके बाद उठना भी पहले 2 घंटे पड़ता है, 4 घंटे पहले उठना पड़ेगा आपको। बट आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रेन कभी लेट होगी, क्योंकि वंदे भारत भी इज ऑलवेज ऑन टाइम। तो इंडियन रेलवेज इज चेंजिंग, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर एक गाना इज ऑल्सो चेंजिंग। चेंजिंग तो नहीं बोलूंगा, ट्रेंडिंग जरूर बोलूंगा। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ रेडियो का गौरव।

0: I hate water wasting रे, जाके टंकी बंद कर।
1: What I want is Sony, yeah. मिठी गल करके तू ना जा छटके छटके।

0: Kashyap.
1: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से

0: 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गए तो?
2: नहीं, क्यों?
0: तो फिर हम फिर

अभी जो ये वीक गया है इसमें क्या हुआ है, सबसे ज्यादा क्या चीज ट्रेंडिंग पे थी, आप लोगों को भी पता होगा, फोन, और कोई ऐसा वैसा फोन नहीं, आईफोन 18 बरगंडी कलर वाला। हर जगह इसकी तारीफ चल रही है और सब लोग इसको खरीदने के लिए बेचैन पड़े हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ, एक बंदा है जिसने अपने पूरे परिवार के लिए आईफोन 18 खरीद लिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा बंदा क्या कर रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए का फोन, 1.5 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 1.80 के अराउंड ये फोन है। 5 फोन लिए होंगे तो कितने के पड़े होंगे, जस्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये पड़े होंगे अराउंड 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए के फोन पड़े होंगे। और ये बड़ा खुश होकर जा रहा है, पूरे परिवार के लिए आईफोन ले लिया, कह रहा अब ऐसी चीजों में पैसे नहीं गिनने चाहिए, ये शौक की चीजें हैं। और उसको देख के लग भी नहीं रहा कि मतलब ही कुड अफोर्ड इट, वैसे डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बोलते हैं, बट काफी बार ऐसा होता है, कुछ लोग ना ये लग्जरी फोन्स के लिए EMI बनवा लेते हैं। और आपको पता है क्या, इंडिया में एक एवरेज यूथ हर चीज में EMI बनवा रहा है, और वो आईफोन लेने के लिए EMI भरने को तैयार है, और ये बेफजूल का ही खर्चा माना जाता है। खैर वापस आते हैं आईफोन के ऊपर, तो आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स, और इसके अलावा आईफोन एयर, और इसके अलावा आईफोन डुओ, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटस पर मिल रहा है लोगों को लोगों ने लेना शुरू कर दिया। और मेरे जिम में एक लड़का आता है, उसने तो ये बरगंडी कलर वाला फ़ोन ले ही लिया अभी से ही। क्यों, देखो आपके पास जो फ़ोन था अगर वो नहीं चल रहा है अच्छे से तब तो समझ आता है कि आपने वो फ़ोन लिया है, बट अगर अच्छे से चल रहा था तो चेंज क्यों किया। और इंडिया में ना आईफोन को एक लग्जरी स्टेटस माना जाता है, एक बिल्कुल कहते हैं ना आइकन माना जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों माना जाता है, क्योंकि मेरे सामने अगर कोई आईफोन लेकर आता है ना, मैं उसको सिंपल सी बात यही बोलता हूँ हर बार कि भाई तूने तो EMI पे लिया होगा ना, क्योंकि मेरे दोस्तों ने EMI पे लिया था, मुझे पता है। चलिए खैर ये तो अपनी अपनी चॉइस है, जिसने ले लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया वो भी ले लेंगे कल को। और अभी आप लोग फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे उन्हीं में से, एड शीरन की आवाज़ में ये गाना सिमेट्री।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या कभी ऐसा हुआ है आप अपने आप को सपने में खेलते हुए देख रहे हो, मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हो सकता है घर बैठे बैठे PS5 पर GTA 5 खेल रहे हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव का कहना है कि अगर सपने में आप अपने आप को खेलते हुए देखते हो तो कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। यार जगह का कहना नहीं है, बेसिकली ये सपने शास्त्र ड्रीम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसे, ड्रीम एस्ट्रोलॉजी। और इसमें देखो ये पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाँ मैं तो चाहूँगा कि आपकी कामयाबी भी हो, आपकी तरक्की भी हो। और हो सकता है अगर आप सपने में अपने आप को खेलते हुए देख रहे हैं तो अचानक से आपको लाभ मिल सकता है। वो कहते ना अचानक से एकदम से गेंस आ जाती हैं लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पैसे बढ़ गए एकदम से आपकी, या फिर तरक्की मिल गई आपको, सम्मान मिलने लग गया आपको। और इसके अलावा अगर आप बॉल से खेल रहे हैं तो इसको तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई नई जिम्मेदारी या फिर तरक्की आने वाली है आपकी लाइफ में। अब इसके लिए ना कुछ सपनों के साइकोलॉजी से भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप अपने आप को खेलते हुए देख रहे हो तो मतलब अब आप स्ट्रेस से दूर हो, बहुत ज़्यादा सुकून है आपकी लाइफ में, और जल्दी ही आपकी लाइफ से स्ट्रेस से दूर होने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिफ्रेशमेंट देने के लिए ऐसे सपने दिखाता है, या फिर हो सकता है आपके अंदर का जो बचपना है, इनर चाइल्ड है जो आपका, वो भी जिंदा दिल है, अभी भी मतलब जागा हुआ है और ज़िंदगी को खुलकर आप जीना चाहते हैं, यह भी दिखा सकता है। तो आपको भी ऐसे सपने आते होंगे, तो ऐसे ही डेली सपनों को डिकोड करते हैं हम लोग। अपने सपने जरूर लिखा कीजिए, हर रोज बोलता हूँ, पर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गानों को एंजॉय कीजिए।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों को पता है किसी को भी कुछ भी बोलना कितना ज्यादा आसान हो चुका है आज की डेट में। मतलब आप लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो और आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। यही तो हो रहा है सोशल मीडिया पे, हर इंसान आ रहा है और कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी सुन रहे हैं आप एंड शो का नाम है HR 896। एंड यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी आके बोल जाते हैं और उनको पता है ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, सोशल मीडिया पे वो कुछ भी बोल देंगे और उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन होगा ही नहीं। और ऐसा ही सेम टू सेम हमारे पड़ोसी मुल्क के एक आरजे ने भी किया था, जिन्होंने कैटरीना कैफ के ऊपर भी टिप्पणी की थी और कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग की थी। और अब जब सलमान भाई ने कुछ बोला है बिग बॉस पे कि क्यों कर रहे हो बॉडी शेम, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया बट उन्होंने हाँ ये ज़रूर बताया कि हाँ 60 का हो गया हूँ, अभी भी फिट हूँ और बिना मेकअप के भी अच्छा दिखता हूँ, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली, बहुत सारी बातें बोली सल्लू भाई ने। तो इसके बाद से वो जो पड़ोसी मुल्क के एक आरजे हैं उन्होंने सामने से आकर माफ़ी मांगी, कह रहे मैं दिल से कैटरीना कैफ से अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और सलमान भाई आपको अगर बुरा लगा हो तो मैं भी माफ़ी आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। एंड ये रियलिटी में सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट इमेजिन आप लोगों को कोई इंसान कुछ बोल जाता है तो सोचो कितना बुरा लगता है ना हम लोगों को। और जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं इनको चाहने वाले जितने हैं ना इनसे नफरत करने वाले भी उतने ही लोग हैं और वो कुछ भी बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, वो बस अपना फ़ोन उठाते हैं, कुछ फ़ोटो देखी, कमेंट कर डाला, कुछ भी वर्ड बोल देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आप लोग के मन में कभी ऐसा आता है कि इसको ये बोल देता हूँ उसको वो बोल देता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये सब करने से आपको तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा बट जिसकी प्रोफाइल है अगर वो ये कमेंट्स पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, सोचिए जरा इसके बारे में। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। और हाँ, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं आप भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नजर जरूर रखिएगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना ब्राउन मंडे।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

इंडिया ने 3-0 से T20 मैचेस में अफगानिस्तान को हरा डाला। और जैसे ही टीम इंडिया ने 3-0 से अफगानिस्तान को हराया, उसके बाद कुछ ऐसा सामने आया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। और यहाँ पर चल रहे हैं एशियन गेम्स, और एशियन गेम्स में इस बार क्रिकेट भी है। मगर क्रिकेट से पहले आप सभी को बता दूं, इंडिया ने टोटल 500 एथलीट्स भेजे हैं, जिसमें से 43 स्पोर्ट्स को कवर करेगी टीम इंडिया। और इसमें हम लोग ऑलरेडी एक सिल्वर जीत चुके हैं वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में। इसके अलावा एक और सिल्वर जीती है एलेवेनल, ये भी टीम में भी थी, बट इन्होंने इंडिविजुअल में भी वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में जीत लिया है। और इसके अलावा सुचिका तड़ियाल, जो कि एक मिक्स मार्शल आर्ट्स प्लेयर हैं, उन्होंने भी क्वार्टर फाइनल में एक अश्योर कर लिया कि हाँ, एक मेडल तो आ ही जाएगा। और इसके अलावा अब कल टीम इंडिया का मैच है, अब कल जो टीम इंडिया का मैच है ना, वो है जापान के साथ। और ये मैच कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो क्या होगा, इंडिया का ही बल्ला चलेगा। और मुझे लगता है टीम इंडिया को ना पहले बैटिंग लेनी चाहिए। जहां पर आप अपनी गेम को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना, तो वहां करने का कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए। और टीम इंडिया को यहां पर बहुत सारे चांसेस है, जैसे अभिषेक शर्मा ने जो फास्टेस्ट सेंचुरी मारी, उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। T20 गेम में वो 150 तक भी शायद स्कोर कर सकते हैं कल वाले मैच में, बट कल क्या होगा ये तो कल ही पता लगेगा। और अभी आप लोग फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए गाने भी चलते रहेंगे।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: नहीं, क्यों? क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर नितीश दीवान। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एट अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद। वार्म अप एटलीस्ट 5 to 10 minutes मिनिमम होना ही चाहिए रनिंग से पहले। उसमें आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जेंटल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का है। हाइड्रेशन कंसिडरिंग डिपेंड करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है, पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है। हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है, ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है। जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कभी भी तो आप बोलना आपको बताइएगा।
1: आपने ये बता दिया तो
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर
0: आप बताइए।

आप लोग भी वो हैं जो हर चीज़ के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी वो हैं जो खाने में क्या खाना है ये भी AI से पूछ के खाते हैं? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारा पानी बर्बाद कर रहे हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? क्या आपको पता है AI पानी पीता है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पानी पीता है और फिर उसके बाद वापस रिटर्न में भी नहीं देता है। सारा पानी गायब हो जाता है इस धरती से। और मैं मजाक इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो, अभी सबसे रीसेंट क्या हुआ है, 1980s की फोटो बनाई है लोगों ने। सब लोग चालू हुए पड़े हैं 1980s इमेज ट्रेंड, हम लोग यही करेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो पर्यावरण संबंधी चीज़ें बढ़ती जा रही है, पानी खत्म हो रहा है। अब एक इमेज बनाने के लिए क्या होता है, कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है, जो डेटा सेंटर्स में लगे जो स्पेशलाइज प्रोसेसर्स होते हैं ना, हाँ उससे मिलती है ये कंप्यूटिंग पावर। और फिर उसमें बिजली खपत होती है, और बिजली जब यूज़ होती है तो गर्मी पैदा होती है, और गर्मी पैदा होने के लिए कूलिंग करना पड़ता है। कूलिंग कैसे होगा? कूलिंग पानी से होगा। तो ये समझ लो, सिंपल सा मतलब इसका यही है कि एक AI इमेज बनाने में 2.9 वॉट आवर बिजली का इस्तेमाल होता है, जो करीब करीब 7 से 9 मिलीलीटर पानी लगता है। अब आप बोलोगे 9 ml पानी तो लगा एक इमेज बनाने के लिए, आपको वो एक इमेज पसंद नहीं है, आपने 10 बार बनवा ली, सोचिए 90 ml पानी आपने यूं ही बर्बाद कर डाला। और यहाँ पर 90 ml की बात नहीं है, यहाँ पर कितने करोड़ों लोगों ने यही काम किया है। तो ये चला आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी है। लोग कह रहे हैं कि AI कुछ करे ना करे, मगर हम इंसान ही खुद इस पानी को ख़त्म कर डालेंगे एक दिन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी चिंताएं भी सही है। तो इस पर आप लोगों की भी कोई ना कोई राय ज़रूर होगी।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देख कर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

क्या आपको लगता है कि अब और बारिश होगी? क्योंकि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि बारिश होगी भी या फिर नहीं होगी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखा सूखा सूखा छाया हुआ है और कुछ नहीं है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर स्वागत है आप सभी का फिर से। और जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये होने वाला है कि इस साल बारिश की कमी है देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो एल नीनो कर रहे थे, फिर हमने बोला सुपर एल नीनो से होता क्या है। देखो जितने भी प्रशांत महासागर है ना, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बता दो आपको, वहाँ पर गर्म हो जाता है पानी, सतह गर्म हो जाती है और फिर वहाँ से हवाएं चलती है जो मानसून को अफेक्ट करती है। इस वजह से इस बार का मानसून थोड़ा सा कमज़ोर था और बोला जा रहा है कि सुपर एल नीनो की वजह से ही एक और बार वो दस्तक देगा और इसकी वजह से थोड़ा सा और दिक्कतें आ सकती है इंडिया वालों को। मतलब इंडिया के आसपास जितनी कंट्रीज है उधर भी दिक्कत आएगी, बट इंडिया में दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है अगले साल, और वो होएगा जनवरी के बाद से। एक्चुअली में जनवरी में तो ठंडा रहता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और इसके बाद क्या होगा, फरवरी मार्च, आपको मार्च से ही गर्मी देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है कि सूखा भी हो जाए किसी जगह पे, और हो सकता है कि मानसून का जो स्टार्टिंग वाला फेज होएगा ना, वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। बट डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर वाला मानसून आई होप अच्छा ही होगा, और वो अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि मेरे को तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर दिवाली के बाद बारिश आ जाए ना तो अच्छा ही है, क्योंकि सारा का सारा स्मॉग ख़त्म हो जाएगा, सारा का सारा जो पोल्यूशन है वो नीचे बैठ जाएगा। और अगर फिर से उसके बाद लोगों ने कूड़ा करकट जलाया तो फिर उसके बाद फिर से पोल्यूशन बढ़ जाएगा। और पोल्यूशन की जब मैंने बात करी दी है तो आप सबको बता दूं कि सुबह और शाम को हल्का हल्का स्मॉगी मॉर्निंग्स और स्मॉगी इवनिंग देखने को मिल रही है, और AQI की बात करूं वो भी 150 के पास पहुंच गया है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और मैं जाता हूं, मतलब बस गया और आया। अभी फ़िलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना बाय बाय आदित्य भारद्वाज। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

क्या हाल है मेरे दोस्त। अब ऐसे दोस्त से पूछो क्या हाल है जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस है, और मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने दोस्त को बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हाल है मेरे दोस्त। उसका रिप्लाई तो एक ही आना है कि बस भाई सब बढ़िया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और अक्सर हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या हाल है। अब देखो, कंजूस इंसान से अगर आप, आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जो कंजूस होगा, उससे अगर आप पूछोगे क्या हाल है, बोलेगा भाई सब बढ़िया, बस तेरा बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए फ़ोन साइलेंट कर रहा हूँ। हाँ, फ़ोन साइलेंट किस लिए कर रहा है वो, क्योंकि उसे गिफ्ट देना पड़ जाएगा। एंड बोलता है भाई मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तू पिला देना, मैं कंपनी दे दूंगा। कंजूस दोस्त का हाल कैसा होता है कि वॉलेट में पैसे हैं, बस बाहर आने की परमिशन नहीं है उसके पास। मतलब पैसे बाहर आने की परमिशन नहीं होती है। रेस्टोरेंट में मेन्यू देख के बोलता है भाई कुछ हल्का सा ले लेते हैं, मतलब उसका कहने का है कि बिल हल्का आना चाहिए। और इसके अलावा अगर उससे ट्रीट मांग ले तो बोलेगा भाई ट्रीट तो पक्की है, बस डेट टाइम और मतलब जगह डिसाइड नहीं हो पाती है ना। किसी भी कंजूस दोस्त से ट्रीट मांग के देख लो, यही होएगा। उसके पास UPI भी है, उसके पास कार्ड भी है, कैश भी है, बस उसके पास पेमेंट करने का इमोशन नहीं है। उससे कभी पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा कि इतना कंजूस, मतलब क्या बोलें उसको, कंजूस तो वो इतना है कि रेस्टोरेंट में पानी भी पहले कंफर्म करता है भाई फ्री है ना, अगर फ्री नहीं है तो आप रेगुलर वाटर लेकर आइए। इसके अलावा बिल आती है उसका फ़ोन पे इम्पॉर्टेंट कॉल पता नहीं कैसे आ जाता है, और फिर या फिर अगर इम्पॉर्टेंट कॉल ना आए तो फिर वो वॉशरूम की डायरेक्शन में अपने आप कैसे चले जाता है। तो आपका भी कोई ना कोई दोस्त होगा जो कि कंजूस होगा, उससे भी पूछना क्या हाल है, क्या उसके भी हाल ऐसे ही हैं, तो बस उसको बोलना कि कभी तो खर्चा कर दिया कर मेरे दोस्त। चलिए, ऐसी और भी बातें होती रहेंगी, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना। मैं हूँ गौरव आपके साथ, आप सुन रहे हैं शो HR 89.6।

थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

क्या आपको पता है बहुत सारे बॉलीवुड के गाने हैं जो कि हॉलीवुड या फिर किसी और म्यूजिक इंडस्ट्री से कॉपी किए गए हैं, और आज मैं उन पे बात करूंगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। और आप लोगों ने एक फिल्म का गाना सुना होगा, डिस्को डांसर, कोई यहाँ नचे नचे, ये गाना तो सबने सुना है। एक्चुअली में ये फिल्म द बगल्स से लिया गया गाना है, वीडियो किल द रेडियो स्टार, ये गाना था और उसको क्या बना दिया, कोई यहाँ नचे नचे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गाने हैं, हाँ यही प्यार है, ये भी गाना था फ्रॉम द मूवी फ्रैंकी वैली। और इसके अलावा बाबी गर्ल तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, तो तुमने जो ना कहा, ये लावारिस मूवी का गाना है। और इसके अलावा अभी रीसेंट की अगर बात करें तो ए दिल है मुश्किल, ये फिल्म सबने देखी होगी ना, इस फिल्म का एक गाना है राजन दे यार बुलेया, पापा रोज का ये गाना है लास्ट रिजॉर्ट, उसको चेंज करके बुलेया बना दिया गया है। और आर पार एक फिल्म आई थी, उसमें बाबू जी धीरे चलना याद है ना ये गाना, तो वो गाना भी परहैप्स से लिया गया है, डोरिस डे से। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि मैं अक्सर डीकोड करता रहता हूँ, तो ऐसे ही डीकोड के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, क्योंकि गौरव आप सभी के लिए अक्सर म्यूजिक तो डीकोड करता ही रहेगा। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए इक्का बाच्चा और डीनो जेम्स की आवाज़ में ये गाना।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आजकल मैं जहां पर भी देख रहा हूं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस की बातें हो रही है। लोग जागरूक होते जा रहे हैं, जिसको देखकर और जिसको सुनकर सच में दिल से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ साथ फरीदाबाद वालों, आप लोगों के लिए फरीदाबाद हाफ मैराथन होने वाली है 27 सितंबर को। सूरजकुंड मेला ग्राउंड से रेस शुरू होगी। रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्राइजेस हैं आप लोगों के लिए। 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर रन करने वालों के लिए टाइम रन है वैसे तो ये, और इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस हैं, तो आप लोग इसमें रजिस्टर कर दीजिए। सिर्फ 5 दिन बाकी है और रन फॉर अ कॉज, ड्रग फ्री हरियाणा। तो आप सभी को बता दूँ 21.1 किलोमीटर की रन है जो कि 6 बजे फ्लैग ऑफ होगा, और इसमें 3 घंटे का टाइम दिया गया है आपको दौड़ने के लिए। 10 किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ उसमें 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है, और 1.5 घंटे में तो आप आसानी से क्लियर कर लोगे, आई गेस कर लोगे। और फिर उसके साथ साथ आप लोग 5 किलोमीटर रन भी कर सकते हैं, दैट्स अ फन रन, और इसमें कोई टाइम नहीं, फ्लेक्सिबल पेस है, आप लोग कितने भी तेज़ी से या धीरे से चल सकते हैं इसमें, और आप इसे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कैसे आपको जाना है faridabadmarathon.in पर, और वहां जाके आपको अप्लाई कर देना है। और एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर 1,27,000 लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और डिस्काउंट कूपन भी आपको मिल जाएगा वहां पे, एंड साथ ही साथ कुछ कुछ टिकट्स तो सोल्ड आउट भी हो चुकी है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए ऐसे ही और भी डिटेल्स लेकर आता रहूंगा फरीदाबाद के बारे में। हाँ, एक और चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि अभी से अगर रन करना शुरू नहीं किया है ना तो अब कर दीजिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और अभी गाना चलाते क्योंकि म्यूजिक इज ऑलवेज द बेस्ट मेडिसिन।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चाल अर्जुन, शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। तो सुन के जाओ। हेलो।

क्या कभी ऐसा हुआ है आप अपने आप को सपने में खेलते हुए देख रहे हो, मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हो सकता है घर बैठे बैठे PS5 पर GTA 5 खेल रहे हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव का कहना है कि अगर सपने में आप अपने आप को खेलते हुए देखते हो तो कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। यार जगह का कहना नहीं है, बेसिकली ये अपनी शास्त्री डीम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसे, डीम एस्ट्रोलॉजी। और इसमें देखो ये पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाँ मैं तो चाहूँगा कि आपकी कामयाबी भी हो, आपकी तरक्की भी हो। और हो सकता है अगर आप सपने में अपने आप को खेलते हुए देख रहे हैं तो अचानक से आपको लाभ मिल सकता है। वो कहते हैं अचानक से एकदम से गेंस आ जाती हैं लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पैसे बढ़ गए एकदम से आपकी, या फिर तरक्की मिल गई आपको, सम्मान मिलने लग गया आपको। और इसके अलावा अगर आप बॉल से खेल रहे हैं तो इसको तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई नई जिम्मेदारी या फिर तरक्की आने वाली है आपकी लाइफ में। अब इसके लिए ना कुछ सपनों के साइकोलॉजी से भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप अपने आप को खेलते हुए देख रहे हो तो मतलब अब आप स्ट्रेस से दूर हो, बहुत ज़्यादा सुकून है आपकी लाइफ में, और जल्दी ही आपकी लाइफ से स्ट्रेस से दूर होने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिफ्रेशमेंट देने के लिए ऐसे सपने दिखाता है, या फिर हो सकता है आपके अंदर का जो बचपना है, इनर चाइल्ड है जो आपका, वो भी जिंदा दिल है, अभी भी मतलब जागा हुआ है और ज़िंदगी को खुलकर आप जीना चाहते हैं, ये भी दिखा सकता है। तो आपको भी ऐसे सपने आते होंगे, तो ऐसे ही डेली डेली सपनों को डिकोड करते हैं हम लोग। अपने सपने जरूर लिखा कीजिए, हर रोज बोलता हूँ, पर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गानों को एंजॉय कीजिए।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ तो इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शाम इतनी ज्यादा हो गई है कि सारे गाने ही अच्छे लगते हैं, वैसे ये गाना तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। I don't know why, but I'm in love with this song. I'm in love, seriously. But मैं एक और चीज के साथ प्यार में पड़ गया हूँ, और उसे कहते हैं रनिंग, रनिंग एंड रनिंग, जॉगिंग की बात कर रहा हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा, या फिर आरजे गौरव कह सकते हो, रेडियो का गौरव कह सकते हो, कुछ भी कह लो, बट अभी इस टाइम मैं हूँ आपका जिम ब्रो। तो रोज इस टाइम आते हैं हम लोग, जिम के बारे में बात करते हैं, वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, और आज मैं बात करना चाहता हूँ रनिंग के बारे में। एक्चुअली मैंने रनिंग करनी शुरू करी, पहले लाइक 1 किलोमीटर दौड़ना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बट अब जब मैंने दौड़ना रेगुलर शुरू किया तो 1 किलोमीटर तो लाइक कुछ पता ही नहीं चलता, 3 किलोमीटर तक तो मैं दौड़ लेता हूँ आराम से, फिर उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है। कभी कभार पैर जवाब दे देते हैं तो कभी कभार मन जवाब दे देता है, बट हाँ मैं 3 से 5 किलोमीटर की कोशिश करता हूँ कि मैं रनिंग कर लूँ हफ्ते में 3 से 4 दिन। बट इसी के साथ साथ मैं आप सभी को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप रनिंग जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि पहले ही दिन आप 4 किलोमीटर दौड़ लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो, नहीं नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रनिंग करनी शुरू करनी है, आपने 100-200 मीटर आपने रनिंग करी, फिर उसके बाद आप पैदल वॉक कीजिए, फिर आपने 100-200 मीटर रनिंग करी, फिर पैदल वॉक कीजिए, ऐसे करते करते 1 किलोमीटर कंप्लीट कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो, और फिर इसके बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाते जाइए, स्पीड बाद में बढ़ जाएगी, अभी सिर्फ आप रनिंग पर कंसंट्रेट कीजिए, और जब रनिंग आपकी रेगुलर हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, तो फिर उसके बाद आप अपने आप को एक टारगेट दीजिएगा कि 7 मिनट के अंदर मैं 1 किलोमीटर तो रनिंग करके ही रहूँगा या फिर रहूँगी, बस इतना सा आपको फॉलो करना है और आप धीरे धीरे एक अच्छे रनर बन जाएंगे। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए और भी खूब सारे गाने और बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

मुझे तो लग रहा है कि मैं भी उड़ रहा हूँ, मगर उड़ते उड़ते मैं फरीदाबाद में ये सब क्या देख पा रहा हूँ। बहुत कुछ दिख रहा है फरीदाबाद में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? सुबह से बात करें ऐसा लग रहा है मुझे, 5 बजे से आप सभी के साथ हूँ। 9 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, बस 8-9 मिनट में 9 बज जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगी गीत। बट गीत के आने से पहले भी मैं बात करता हूँ वापस कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लेविटेटिंग एक्स जो गाना था ये, हाँ यहाँ कदम कदम पर कूड़ा पड़ा है। अब देखो, निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, उन्होंने सफाई भी शुरू कर दी है, बट उसके बावजूद कुछ सड़कें ऐसी हैं, कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर अब लोगों की आदत बन चुकी है। उन्होंने वहां पर कचरा फेंकना शुरू किया था और अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो वहीं पर बार बार आकर कचरा फेंके जा रहे हैं। काफ़ी सारी जगह ऐसी होगी जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हमेशा साफ सुथरी रहा करती थी, आज की डेट में वो कूड़ेदान में तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी आके तो कूड़ा डाल नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर कूड़ा कौन डाल रहा है? आम जनता। तो जितने भी आम जनता मुझे सुन रही है, आप सब बस ये समझ लीजिए, आप अपना ही घर गंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया हमारा ही घर है। और मैं साफ सफाई पर बातें इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट अ क्लीन नेशन, आई वॉन्ट क्लीन फरीदाबाद सबसे पहले। और इसी के साथ साथ आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर के आसपास सफाई इंश्योर कीजिए, धीरे धीरे पूरा फरीदाबाद साफ हो जाएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से कल शाम 5 से 9। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, क्योंकि वापस आएगी गीत विदेश कुबाजियां, प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

Hey, how you all are listening Radio Maharani 89.6 FM कुछ हटके शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां। और रात के इस हिस्से में जहाँ शहर थोड़ा सा शांत है और दिल थोड़ा ज्यादा बोलने लगा है, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत। और अब बारी है इश्क शायराना की। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करेंगे, उन्हें सिर्फ शायर या कवित्री कहना थोड़ा सा कम है। वो उन लोगों में से थी जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ पाया नहीं, उसे जिया, उसे लिखा और कभी कभी उसकी तकलीफ को भी खूबसूरती दे दी। अमृता प्रीतम। इनकी लिखी हुई मोहब्बत में एक अलग ही बात थी। वहाँ प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं था, कभी प्यार इंतजार था, कभी दूरी, कभी एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं था, और कभी खुद को किसी के सामने पूरी तरह खोल देने की हिम्मत। आज जब रिलेशनशिप्स को स्टेटस, लेबल, वेयर इज दिस गोइंग जैसे सवालों में डिफाइन किया जाता है, अमृता की मोहब्बत शायद हमें याद दिलाती है कि कुछ रिश्ते डिफाइन नहीं होते, बस खूबसूरत हो जाते हैं। तो आज की रात बात होगी अमृता प्रीतम के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: फरीदाबाद, तैयार हो जाओ एक नई दौड़, एक नए जज्बे और एक नए हरियाणा के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद लेकर आ रहा है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026, जहां हर कदम होगा फिटनेस की तरफ और हर सांस होगी ड्रग फ्री हरियाणा के नाम। 21.1 किलोमीटर टाइम रन, 10 किलोमीटर टाइम रन और 5 किलोमीटर फन रन। और हाँ, टोटल प्राइज मनी 10 लाख रुपीज। 27 सितंबर 2026, वेन्यू सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद। फ्लैग ऑफ करेंगे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करिए www.faridabadhalfmarathon.in और बने इस हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा। दौड़ेगा फरीदाबाद, बनेगा ड्रग फ्री हरियाणा। रेडियो पार्टनर रेडियो महारानी 89.6। ट्यून इन, पंप्ड इन, रेडी टू रन।
4: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

वेलकम बैक टू इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूं आपकी इश्क वाली गीत। और आज की रात हम बात कर रहे हैं अमृता प्रीतम की। अमृता की राइटिंग में एक चीज मुझे हमेशा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी है, वो प्यार को सिर्फ पाने की कहानी नहीं बनाती, उनके यहाँ प्यार में इंतजार भी है, दूरी भी है और वो कनेक्शन भी है जो इंसान के चले जाने के बाद भी कहीं हमारे अंदर बचा रह जाता है। उनकी सबसे याद की जाने वाली लाइन्स है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। अब सोचिए किसी से ये कहना मैं तुझे फिर मिलूंगी कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज छुपी हुई हैं। कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे, किस रूप में मिलोगे, शायद किसी पुराने शहर की सड़क पर, शायद किसी किताब के पन्ने में, शायद किसी गीत में, या शायद किसी एक ऐसे इंसान में जो तुम्हें उसकी याद दिला दे। और यही तो आज के रिलेशनशिप्स में होता है, हम कहते हैं बस इट्स ओवर, चैट डिलीट कर दी, पिक्चर्स आर्काइव कर दी, नंबर तक रिमूव कर दिया, लेकिन फिर अचानक कोई सॉन्ग बजता है और दिमाग नहीं सीधा दिल कहता है याद है। एक परफ्यूम, एक जगह, एक डायलॉग, किसी के बोलने का तरीका, और अचानक वो इंसान फिर से आपके सामने खड़ा हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी इंसान को मिस कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम उस वर्जन ऑफ आवरसेल्फ को मिस कर रहे होते हैं जो उस इंसान के साथ हमारा हुआ करता था। वो केयरफ्री वाले हम, वो लेट नाइट कॉल वाले हम, वो छोटी सी बात पर जेन्युइनली खुश हो जाने वाले हम। शायद इसीलिए कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, वो आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कहीं रह जाते हैं।

0: Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सब के सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.
1: डॉक्टर कॉलिंग.
0: न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है.

हाय, वेलकम बैक टू इश्क बाजियां। रात के इस वक्त में ना एक अजीब सी बात होती है। दिन में हम बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, मूव ऑन, डोंट टेक्स्ट हिम, डोंट ओवरथिंक, इट वाजंट मीन टू बी। लेकिन रात में वही इंसान याद आता है जिसे हमने दिन भर कन्विंस किया है कि हमें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। और शायद यही वजह है अमृता प्रीतम की राइटिंग आज भी इतनी रेलेवेंट हमें लगती है, क्योंकि उनकी मोहब्बत बहुत टेक्स्ट बुक नहीं थी। वो उस प्यार की बात करती हैं जिसे हर बार किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। आज हमारी जनरेशन में एक सवाल बहुत कॉमन है, व्हाट आर वी? दो लोग रोज बात करते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें जानने लगते हैं, एक दूसरे की आवाज से मूड समझ लेते हैं, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पूछता है सो आर यू गाइस टुगेदर, दोनों के पास जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद कनेक्शन रियल है, बस रिलेशनशिप का लेवल क्लियर नहीं है। और वही अमृता की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। उनकी राइटिंग हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर रिश्ते को कोई नाम देना जरूरी है? क्या हर कनेक्शन को रिलेशनशिप बनना चाहिए? क्या हर मोहब्बत का डेस्टिनेशन मैरिज, कमिटमेंट या फॉरएवर होना ही चाहिए? कभी कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, आपको खुद के बारे में कुछ सिखाता है, आपकी सोच बदलता है, आपको थोड़ा सॉफ्टर बनाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी, और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रिश्ता मीनिंगलेस था। कुछ लोग आपकी जिंदगी में चैप्टर बनकर आते हैं, पूरी किताब नहीं। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर चैप्टर को एंडिंग देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कहानी बस वहीं रुक जाती है, नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लोजर, नो परफेक्ट गुड बाय। और शायद लाइफ भी ऐसी है, हम क्लोजर मांगते रहते हैं जबकि सामने वाला शायद बहुत ही पहले आगे बढ़ चुका होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, मे बी दैट्स ओके। हर कनेक्शन को रिलेशनशिप बनना जरूरी नहीं, हर लव स्टोरी को हैप्पी एंडिंग मिलना जरूरी नहीं। कुछ कनेक्शंस बस इसीलिए खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो कभी पूरी तरह हमारे हो नहीं पाए। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
1: मम्मी के बर्थडे के लिए परफेक्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

बाजियां। वेलकम बैक टू इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ, आपकी इश्क वाली गीत और सेगमेंट है इश्क शायराना। और आज की रात अमृता प्रीतम के साथ शायद सबसे हम जरूरी बात कर लेते हैं। हमने प्यार की बात की, दूरी की बात की, उन लोगों की बात की जो हमारी जिंदगी से चले गए लेकिन हमारी यादों से नहीं गए। लेकिन एक चीज पर बात करना भी बाकी है, खुद पर। क्योंकि हम प्यार में सामने वाले को बहुत जगह दे देते हैं, उसकी पसंद, उसका मूड, उसका टाइम, उसकी प्रायोरिटीज, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि हम उसकी जिंदगी में जगह बनाते बनाते अपनी जिंदगी से ही बाहर हो गए हैं। आज के रिलेशनशिप्स में ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप किसी के रिप्लाई का इंतजार करते हैं, उसका लास्ट सीन चेक कर रहे हैं, उसका मूड खराब है तो आपका भी खराब है, उसने बात नहीं की तो पूरा दिन ऑफ। और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैं इतना डिपेंडेंट कब से हो गया। शायद प्यार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएं। अमृता प्रीतम की दुनिया में मोहब्बत के साथ एक और चीज बहुत पावरफुल है, अपनी पहचान। किसी को चाहना लेकिन खुद को खोना नहीं, किसी के साथ चलना लेकिन अपनी दिशा भूलना नहीं, किसी की कमी महसूस करना लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को उस कमी के नाम पर कर देना नहीं। क्योंकि सच तो ये है, जिस इंसान के जाने के बाद आपको खुद से भी मिलना मुश्किल हो जाए, वहाँ शायद आपने सिर्फ उस इंसान को नहीं खोया, आपने अपने अंदर का कुछ हिस्सा भी कहीं पीछे छोड़ दिया। और शायद हीलिंग का मतलब किसी नए इंसान को ढूंढ लेना नहीं है, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है वापस अपने पास आना, उस जगह पर वापस जाना जहां कभी किसी के साथ गए थे लेकिन इस बार अपने साथ जाना और महसूस करना, हाँ वो कहानी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं थी। शायद यही वो जगह है जहां इश्क थोड़ा मैच्योर हो जाता है, जहां हम कहते नहीं है तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो, बल्कि धीरे से कहते हैं तुम्हारे साथ जो था खूबसूरत था और आज जो मैं अपने साथ हूँ वो भी कम खूबसूरत नहीं है। तो आज की रात अगर किसी की याद आ रही है तो आने दीजिए, उस याद को मिटाना नहीं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में लौटने के लिए नहीं होते, वो बस आपको ये बताने आते हैं कि आपका दिल कितना गहरा महसूस हो सकता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, ये था हमारा इश्क शायराना अमृता प्रीतम के नाम। अब इन बातों को यहीं छोड़ते हैं और सुनते हैं एक गाना, शायद जो आपको अपने किसी अधूरे चैप्टर की याद दिला दे। स्टे ट्यून्ड इश्क बाजियां पर।

कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। एक जमाना ऐसा था जहां ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था, ना लेट नाइट कॉल्स, फिर भी लोग प्यार में पड़ते थे, चिट्ठियां लिखते थे, नजरें मिलाते थे और कभी कभी तो सिर्फ एक मुलाकात के इंतजार में पूरा दिन गुजार देते थे। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी और इश्क बाजिया में अब वक्त है थोड़ा सा पीछे जाने का, जहाँ प्यार थोड़ा स्लो था लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा इंटेंस भी। ये है रेट्रो इश्क और आज की कहानी है दो ऐसे सितारों की जिनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी बल्कि कैमरा बंद होने के बाद भी उनके बीच एक कहानी चल रही थी। नाम है देवानंद साहब और सुरैया। 1940s का बॉम्बे, फिल्मी दुनिया अपने गोल्डन फेज की तरफ बढ़ रही थी और इसी दौरान विद्या के सेट पर देवानंद साहब और सुरैया की मुलाकात होती है। कहानी में ट्विस्ट ये था कि सुरैया उस वक्त एक बड़ी स्टार थी और देवानंद अभी भी अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन प्यार को ना बॉक्स ऑफिस समझ पाता है ना स्टारडम। कहा जाता है विद्या की शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट ने दोनों की नजदीकियां बढ़ाई। एक बोट सीक्वेंस के दौरान सुरैया को बचाने के बाद देवानंद की तरफ उनका दिल और झुक गया और फिर शुरू हुआ वो दौर जहां फीलिंग थी लेकिन उन्हें ओपनली कहना इतना इजी नहीं था। लव लेटर्स लिखे जाते थे लेकिन सीधे हाथ में नहीं दिए जाते थे। कभी कोई को-स्टार मैसेंजर बनता, कभी कोई कैमरामैन, कभी कोई डायरेक्टर। आज के जमाने में हम एक डीएम करके पूछ लेते हैं, सो आर वी डेटिंग, और उस दौर में एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए भी पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी। लेकिन शायद यही तो उस प्यार की खूबसूरती थी, देयर वॉज नो इंस्टेंट एक्सेस, और जब इंतजार होता था ना तो एक छोटी सी मुलाकात भी बहुत बड़ी लगती थी। देवानंद साहब और सुरैया की ये कहानी अभी शुरू हुई थी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस प्यार के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या दो लोग सिर्फ एक दूसरे से प्यार करके साथ रह सकते हैं। इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं था। स्टे विद मी क्योंकि रेट्रो इश्क की कहानी अभी शुरू हुई है

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल।

0: Amoria.
1: 89.6 Radio Maharani per bus. Ek chota sa break.
2: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

रेडियो महारानी पर रात का ये सफर जारी है और इश्क बाजिया में अब हम वापस जा रहे हैं उस दौर में जहां प्यार के लिए एक फोन कॉल भी इवेंट हुआ करता था। ये है हमारा सेगमेंट रेट्रो इश्क। अभी हमने कुछ ही देर पहले बात शुरू की थी देवानंद साहब और सुरैया की, दोस्तास जो पर्दे पर साथ आए और धीरे धीरे असल जिंदगी में भी एक दूसरे के हो गए। लेकिन अब कहानी थोड़ी सीरियस होने वाली है क्योंकि प्यार छुप कर करना ईजी नहीं है ना, लेकिन प्यार के लिए स्टैंड लेना दैट वॉज द रियल टेस्ट। देवानंद साहब और सुरैया एक दूसरे को लव लेटर्स और मैसेजेस के जरिए कनेक्ट किया करते थे। कई बार उनके कोस्टार्स इस सीक्रेट कम्युनिकेशन में मदद करते थे। जरा इमेजिन कीजिए, आज हम किसी को पसंद करते हैं तो इंस्टाग्राम खोलते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, एक लाइक करते हैं और फिर शायद डीएम, और उस दौर में एक खत लिखा जाता था, फिर सोचा जाता था कि ये खत पहुंचाया कैसे जाए, फिर इंतजार होता था कि जवाब आएगा या नहीं, और शायद इसी इंतजार में उनके प्यार को और ज्यादा इंटेंस बना दिया जाता था। फिर आया वो मोमेंट जब देवानंद साहब ने सुरैया से शादी के लिए बात की। उन्होंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि प्यार के आगे बाकी सारी चीजें छोटी हैं। सुरैया भी उनसे प्यार करती थी लेकिन फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा था। देवानंद साहब ने उन्हें उस वक्त एक डायमंड रिंग दी, उस वक्त करीब 3,000 की रिंग वो बताई जाती है। अब सोचिए, एक तरफ वो रिंग है और एक तरफ वो इंसान है जिसे आप अपना पूरा फ्यूचर मान चुके हैं, और दूसरी तरफ फैमिली की वो आवाज जो कह रही है ये रिश्ता नहीं हो सकता। आज भी कितने रिलेशनशिप इसी जगह आकर रुक जाते हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनके बीच सिर्फ फीलिंग्स नहीं सर्कमस्टांसेस भी खड़े होते हैं, तो तब सवाल ये नहीं रहता कि डू यू लव मी, सवाल हो जाता है हाउ फार आर यू विलिंग टू गो फॉर दिस लव। देवानंद साहब शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे लेकिन सुरैया के लिए चीजें इतनी सिंपल नहीं थी, और शायद यहीं से उनकी लव स्टोरी का सबसे पेनफुल चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि कभी कभी दो लोगों के बीच प्यार कम नहीं होता, बस उनके पास उसे बचाने की फ्रीडम नहीं होती। अभी वक्त है गाने का, स्टे विद मी, क्योंकि रेट्रो इश्क की कहानी अभी कुछ दिल तोड़ने वाली है।

हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं, तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

रेडियो महारानी पर रात थोड़ी सी और गहरी हो गई है और इश्क बाजिया में चल रहा है रेट्रो इश्क। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हमने बात की थी देवानंद साहब और सुरैया की, एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ परिवार की बंदिशें। लेकिन असली हार्ट ब्रेक तब शुरू होता है जब आपको ये समझ आ जाए कि आप सामने वाले से प्यार करते हैं लेकिन उसके साथ जिंदगी जी पाना शायद अब आपके हाथों में नहीं है। देवानंद साहब शादी के लिए तैयार थे, उन्होंने सुरैया को कोर्ट मैरिज के लिए मनाया लेकिन सुरैया की ग्रैंड मदर इस रिश्ते के खिलाफ थी। और एक और बात थी, देव चाहते थे कि शादी के बाद सुरैया अपना करियर छोड़ दे। सुरैया जो उस वक्त एक बहुत बड़ी स्टार थी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब जरा आज की बात कर लेते हैं, किसी रिलेशनशिप में प्यार है लेकिन फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। एक कहता है मेरे साथ चलो, दूसरा कहता है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्यार में हम अक्सर ये पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद असली सवाल ये होना चाहिए क्या हम एक दूसरे की जिंदगी और चॉइसेस की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। देव साहब और सुरैया की कहानी में फैमिली प्रेशर भी था, अलग बैकग्राउंड भी थे, पर्सनल चॉइसेस भी थी और आखिरकार सुरैया ने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने बाद में खुद कहा था कि शायद उनके अंदर उस कदम को उठाने का कॉन्फिडेंस नहीं था और ये भी कि शायद वो मिस्टेक थी या शायद डेस्टिनी। यहीं पर ये कहानी आज के लोगों से कनेक्ट करती है। कितने रिलेशनशिप्स ऐसे हैं ना जहाँ दो लोग एक दूसरे को जेन्युइनली चाहते हैं लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। कभी करियर बीच में आ जाता है, कभी फैमिली, कभी डिस्टेंस, कभी ईगो, या कभी दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए भी ये सीख नहीं पाते कि एक दूसरे के लिए जगह कैसे बनाई जाए। बिकॉज लव इज नॉट जस्ट अबाउट चूजिंग समवन, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सेप्टिंग देम एज दे आर। देव और सुरैया की कहानी यहीं टूट जाती है। देवानंद साहब आगे बढ़ जाते हैं और सुरैया, उन्होंने कभी शादी नहीं की। अब सवाल ये नहीं है कि उनकी कहानी में कौन सही था या कौन गलत। शायद कुछ लव स्टोरीज में कोई विलन नहीं होता, समटाइम्स लाइफ इटसेल्फ बिकम द विलन। और कुछ कहानियां हैप्पी एंडिंग के लिए नहीं होती, वो बस हमें सिखाने आती हैं किसी को चाहना और किसी के साथ जिंदगी बिता पाना दो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैं। अब इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, वक्त है गाने का। स्टे विद मी।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

सुदेव साहब और सुरैया की कहानी में सबसे खूबसूरत बात शायद ये नहीं थी कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, बल्कि ये थी कि वो प्यार खत्म नहीं हुआ, बस उसकी कहानी अधूरी रह गई। शो है इश्कबाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। और आज जब हम रिलेशनशिप्स में क्लोजर ढूंढते हैं, एक आखिरी कॉल, एक आखिरी मैसेज, एक एक्सप्लेनेशन कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन कुछ कहानियों को क्लोजर मिलता ही नहीं। कुछ कहानियां बस दिल के किसी कोने में रखी रह जाती हैं, बिल्कुल उस पुराने खत की तरह जिसे सालों बाद खोलो तो कागज पुराना हो चुका होता है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी फ्रेश हैं। देव साहब और सुरैया की कहानी भी शायद ऐसी ही थी। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वो जो व्हाट इफ था ना, अगर उस वक्त हालात हमारे फेवर में होते तो सवाल शायद कभी पीछे नहीं छूटता। और शायद यही तो लव की सबसे स्ट्रेंज बात है, हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई पॉसिबिलिटीज को इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते। कभी कभी हम इंसान को नहीं, उस फ्यूचर को मिस करते हैं जो उसके साथ हमने कभी इमेजिन किया था। और शायद इसीलिए देव साहब और सुरैया की कहानी आज भी इतनी ज्यादा रेलेवेंट लगती है, क्योंकि आज भी प्यार में लोग फैमिली, सोसाइटी, करियर, टाइमिंग, इन सब के बीच कहीं ना कहीं खुद को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, तब प्यार के लिए चिट्ठियां भेजी जाती थी, आज टाइपिंग दिखता है तो फिर से सिर्फ सीन, और तब एक डायमंड रिंग पूरी कहानी का सिंबल बन सकती थी। आज हजारों मैसेजेस के बाद भी कोई कमिटमेंट नहीं मिलता, लेकिन एक चीज शायद तब भी सेम थी और आज भी सेम है, जब प्यार सच्चा होता है ना तो उसका असर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां ही हमें सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि पूरी कहानी खत्म हो जाती है लेकिन अधूरी कहानी में हमेशा एक सवाल बचा रहता है, क्या होता अगर। और शायद इश्क की सबसे खूबसूरत सजा भी यही है। मैं हूँ आरजे गीत और ये था रेट्रो इश्क, इश्क बाजियां सुन रहे हैं आप। मिलते हैं फिर एक और पुरानी मोहब्बत की कहानी के साथ, तब तक अपने प्यार को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ख्याल रखिएगा और प्यार को थोड़ा सा ओल्ड स्कूल रहने दीजिए। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। बाजियां सुन रहे हैं आप, मिलते हैं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए।

बातों को थोड़ा सा वक्त दीजिए और याद रखिए, जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

0: बाजिया।
1: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां, साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। हर ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जा। ओ खई के

रेडियो महारानी कुछ हटके। रेडियो महारानी

से

नजर से तुम देखो।

कहानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी।

9.6 रेडियो महारानी।

गाड़ियां दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना। और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

ना बने।

0: ही पकड़ने के लिए ठाकुर को जय और वीरू की मदद चाहिए, जिसके लिए उन्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि उन्हें दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जय और वीरू मान जाते हैं और होली वाले दिन डाकुओं के आने पर उन पर हमला कर देते हैं।
1: गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है।
0: पर इस लड़ाई के दौरान जय देखता है कि ठाकुर ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिससे गाँव वालों की जान जा सकती थी। जिसके बाद सबको एक सच्चाई का पता चलता है कि जब पुलिस ऑफिसर ठाकुर ने गब्बर को पकड़ने की कोशिश की थी, तब गब्बर ने उसके दोनों हाथ काट दिए थे और उसके पूरे परिवार को भी जान से मार दिया था।
2: ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर।
0: इसलिए ठाकुर रिटायर होने के बाद भी गब्बर को पकड़ना चाहता था, पर दोनों हाथ ना होने की वजह से वो लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता था। ठाकुर की कहानी जानकर जय और वीरू बिना किसी पैसों के डाकुओं के अड्डे पर हमला करते हैं और गब्बर को पकड़ कर ठाकुर के हवाले कर देते हैं। लड़ाई में वीरू अपने सबसे अच्छे दोस्त

रेडियो महारानी सेलिब्रेट करता है फिल्म शोले के 48 साल।

छोड़ो।

0: बहनों की हो जाती है अदला बदली।
1: सीता बेटी, हम तेरे चाचा और चाची हैं।
2: तोरे से तो चमचा और चमची लगते हैं।
0: और तभी रंजीत, जो कि सीता से शादी करने के लिए उसे किडनैप कर लेता है, जिस वजह से गीता अपनी बहन सीता को बचाने वहाँ पहुँच जाती है।
2: तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया। आप कौन है? आप मुझे इन हैरान आंखों से न देखो सीता, मैं कोई पराई नहीं हूँ, तुम्हारे ही दूसरे रूप में, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता।
0: और सालों से बिछड़ी बहनों का

not

बोलो।

गंगा।

जान है हम तुम जमाना के।

Andy.

नाटक।

जो अपने साथ

शहर मुझे 89.6 FM रेडियो महारानी के नाम से।

नशा।

में तो हम सबके पापा लगते हैं, नाम है रेडियो।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।